ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज शुक्रवार है। शक सम्मत 1948 के ज्येष्ठ मास की 29वीं तिथि तदनुसार 19 जून 2026 सुबह के 5:53 और 34 सेकंड हुए हैं। अब हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
1: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
0: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून, ला रहा नया संदेश।

योग से जीवन बने विशेष। बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा। योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं।

0: 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: आया खुशियों का पैगाम पीएम किसान।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। सरकार ने तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। अमेरिका ने ईरान के साथ हुए समझौते के बाद ईरानी बंदरगाहों पर लगी नौसैनिक नाकाबंदी हटाई। और हॉकी में भारत ने FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे।
4: आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा।
3: प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वो समावेशी होगा। श्री मोदी ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वे फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
4: 12 साल के इस कालखंड में भारत का GDP 2 गुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या 2 गुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी 2 गुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
3: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस यात्रा के समापन पर हिंदी में विशेष विदाई वीडियो संदेश रिकॉर्ड किया है।
5: प्रिय मित्र नरेंद्र, मुझे बहुत खुशी हुई आपका निस एवियन पेरिस मैंने सातवें दौरे के लिए स्वागत करके फ्रांस और भारत की दोस्ती हमारा है।
3: हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से भारत को नवाचार, प्रौद्योगिकी और समावेशी विकास के क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा।
6: कल शाम पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत केवल भविष्य की तैयारी ही नहीं कर रहा बल्कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और जनता की आकांक्षाओं के बल पर भविष्य को आकार भी दे रहा है। यात्रा के दौरान भारत और फ्रांस के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी और वैश्विक सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोग और मजबूत हुआ। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि इस यात्रा से भारत फ्रांस साझेदारी को अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई मजबूती

0: पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभी।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देशभर में 15 लाख से रोजगार के अवसर सृजित होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देशभर में 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। इस किस्त से 2,18,00,000 से अधिक महिला किसानों को लाभ मिलेगा। इस अवसर पर श्री मोदी पश्चिम बंगाल में कई महत्वपूर्ण कृषि पहल का भी शुभारंभ करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। उत्तर प्रदेश के लिए 48,298 मीट्रिक टन मूंग, 97,970 मीट्रिक टन उड़द और 41,718 मीट्रिक टन मूंगफली की खरीद को मंजूरी दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम में भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ओंकारेश्वर के बाद राष्ट्रपति उड़ीसा के रायरंगपुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज रायरंगपुर में वो एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर का दौरा करेंगी और एक बड़े इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जल पूर्ति प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगी। वो ब्रह्मा कुमारी के मातृशक्ति भवन, एक नए स्पेशल सर्किट हाउस रायरंगपुर पुणे जिले का भी उद्घाटन करेगी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मयूरभंज में राष्ट्रपति के साथ शामिल होंगे। दोनों नेता उड़ीसा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में रायरंगपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और खास परियोजना को जनता को समर्पित करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए रायरंगपुर से मैं प्रकाश दास।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम पूर्वोत्तर में बदलाव के लिए सरकार के महत्वपूर्ण कदमों के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
5: नए भारत में राष्ट्र निर्माण की बात हो और पूर्वोत्तर क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाए, यह संभव नहीं है। एक समय था जब पूर्वोत्तर को हिंसा, नाकाबंदी और उपेक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस तस्वीर को बदल दिया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने स्वयं 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। इस दौरान दूर दराज और पहाड़ी इलाकों की देश के बाकी हिस्सों से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिला है और स्थानीय लोगों के लिए आय के नए अवसर पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 47,270 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले 12 वर्षों में 8 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। वर्ष 2014 में पूर्वोत्तर राज्यों में 9 हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 17 हो गई है। उड़ान योजना के तहत 90 हवाई मार्गों तथा 12 हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट को चालू किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,170 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। आजादी के बाद पहली बार वर्ष 2022 में मणिपुर तक पहली मालगाड़ी पहुंची। वर्ष 2023 में पहली मालगाड़ी मेघालय पहुंची और वर्ष 2025 में पहली ट्रेन मिजोरम पहुंची। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में ईटानगर के डेरा नानतुंग सरकारी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर MQ खान ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में हवाई संपर्क में काफी सुधार हुआ है।
6: 2014 के पहले एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, वो अभी एयर कनेक्टिविटी आ गई है और लोग 2.5 घंटे में ईटानगर से दिल्ली

0: ही पहुंच रहे हैं। तो होलंगी एयरपोर्ट से कलकत्ता जाइए, कलकत्ता से कहीं भी जा सकते हैं, दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट्स है।
1: वहीं पूर्वोत्तर के विकास को गति देने के लिए पीएम डिवाइन योजना के तहत कुल 6,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में गुवाहाटी के एक स्थानीय निवासी ने कहा कि क्षेत्र में सड़क और हवाई संपर्क पहले की तुलना में काफी बेहतर हुआ है।
2: मोदी गवर्नमेंट का ये 10 साल बहुत अच्छा से पार हुआ है और ये जो हम लोगों का आसाम का नया एयरपोर्ट बन गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बन गया और सड़कों का भी हालत काफी सुधर गया है। अभी बहुत जल्द से जल्द हम लोग बहुत दूर तक जा सकते हैं और गांव का कनेक्टिविटी भी अच्छा हुआ है।
1: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर के 8 राज्य जिन्हें अष्टलक्ष्मी भी कहा जाता है विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों में जहाजों के आवागमन पर लगाई गई समुद्री नाकाबंदी हटा ली है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिकी केंद्रीय कमान ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश अनुसार ईरान के विरुद्ध चलाए जा रहे अमेरिकी नौसैनिक अभियान समाप्त कर दिए गए हैं। हालांकि नाकाबंदी हटाए जाने के बावजूद समझौते के अनुपालन की निगरानी के लिए अमेरिकी नौसैनिक आसपास तैनात रहेंगे। खेलों में भारत ने कल न्यूजीलैंड में FIH महिला नेशंस कप में पूल ए के मैच में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला कल चिली से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
4: धन्यवाद फरहत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन के समझौते पर हस्ताक्षर करने के साथ ही अमेरिका ईरान युद्ध के अंत होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, महंगाई पर लगेगी लगाम, बाजार से घर गृहस्थी तक राहत की उम्मीद। लोकसत्य के शब्द हैं, जंग खत्म, होर्मोज खुला, तत्काल कम नहीं होंगी पेट्रोल और डीजल की कीमतें, दैनिक जागरण की खबर है। वहीं नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर लगी अस्थाई रोक के खिलाफ दाखिल याचिका पर फैसला सुरक्षित रखने से जुड़ी खबर पर अमर उजाला ने केंद्र सरकार के शब्द प्रकाशित किए हैं। आतंकी गतिविधियों के लिए टेलीग्राम मुफ्त, सरकार ने प्रतिबंध को बताया उचित। हिंदुस्तान ने पर्दाफाश शीर्षक से बच्चों की तस्करी पर खबर प्रकाशित की है। बच्चों के सौदागर गिरफ्तार, नवजातों की खरीद फरोख्त करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह दबोचा। वहीं जनसत्ता ने अपने संपादकीय पन्ने पर हाल ही में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों से जुड़ा लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, बच्चों में कुपोषण का कुचक्र।
3: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। सरकार ने तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। और हॉकी में भारत ने FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India is emerging as a trusted and stable partner to the world amid global uncertainty and disruption. Prime Minister Modi to disburse incentives worth 2,400 crore rupees under Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana in New Delhi today. Government approves large-scale procurement of pulses and oil seeds at minimum support price for Tamil Nadu, Gujarat, Uttar Pradesh and Haryana. President Draupadi Murmu to attend program marking International Sickle Cell Day in Omkareshwar, Madhya Pradesh today. US lifts naval blockade of Iranian ports as part of agreement between the two countries. And in hockey, India beat Uruguay 3-2, registering their third consecutive win to storm into semi-finals of FIH Women's Cup in New Zealand. Prime Minister Narendra Modi has said that India is emerging as a trusted partner to the world. Addressing the Indian diaspora in Paris last night, Mr. Modi said there was a time when

0: procession, route, and avoid non-essential travel. Nagaland schools shift International Day of Yoga observance to June 22nd following concerns raised over holding the event on a Sunday. Kiffiri police arrest Hiluki Sanglung alias Amos, an armed branch constable of DEF Kiffiri, following allegations of sexual assault and rape of an elderly woman in Kiffiri. First indigenous air cushion vehicle inducted into Indian Coast Guard in Goa. And Minister of State Raksha Khatse reviews preparations for Asian Senior Fencing Championships in Delhi. That's all we have in this news headlines.
1: FM Tracker Band.
2: 103 MHz.
1: News, music, and entertainment.
2: This is FM Tracker Band.
1: FM 103 MHz.
3: Jai Hind. पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
4: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: For the route TCP to Razu Point, it's no entry for all as there is a public rally going on. For the route Razu Point to Census Point, it's light traffic for all northbound commuters, but for those headed south, there will be heavy traffic. Alternate route that can be opted for is Census Point connecting NHAKA. For the route High School Junction to Census Point, it's moderate traffic awaiting all northbound commuters, but if you're southbound, there will be heavy traffic. Lastly, for the route NHAKA Junction to Census Point, it's moderate traffic for all commuters out there regardless of whether you're northbound or southbound. Alternate route that you can take up in this case is TKL model connecting IG route. Listeners, that was the real-time traffic update for the reporting time 11 a.m. This is Akashvani Kohima.
1: FM Tragoban
2: 103 MHz.
1: News, music and entertainment.
2: This is FM Tragoban
1: FM 103 MHz.
3: Hello Nagaland, Census laga poila phase 2 aishe June 16 para 30 tarikh bitorte apuni khan ghor laga details online de bhoribole karone se.census.gov.in te jabi अपनी खान लगा घोर जी होले भी गिनती हो बोलागे अपनी खान भाग लुआ परा भाग प्लानिंग और डेवलपमेंट कर बोले मदद पावो अमी खान लगा सेंसेस अमी खान लगा डेवलपमेंट
4: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया, अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है, नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
5: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: FM Dragoban
2: 103 MHz
1: News, Music and Entertainment
2: FM
1: 103 MHz

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया, अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
2: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

मैं हूँ झुम झुम झुम झुम झुमरो फक्कड़ घूमू बन के घुमरो साथ में हम सफर न कोई कारवां भोला भाला सीधा

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: FM Dragoban 103 MHz News, Music and Entertainment FM 103 MHz

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। फ्रांस में कल रात भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे।
1: आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वो समावेशी होगा। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देशभर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में भाग लिया। राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कार्यक्रम स्थल पर राष्ट्रपति का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत राज्य सरकार की उपलब्धियों की सराहना की।
2: राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने जो बहुआयामी उपलब्धियां हासिल की है, इसके लिए मैं राज्य सरकार की सराहना करती हूँ। वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ करते समय जो अनेक बड़े लक्ष्य देश के सामने रखा गए थे, उनमें से स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया है। 9000 शिशुओं से लेकर 40 वर्षों की आयु तक के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य पूरा हो चुका है।
0: कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 के तहत स्थापित विशेष प्रदर्शनी का दौरा किया। अपने दौरे के अगले चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के रायरंगपुर जाएंगी, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी। तमिलनाडु विधानसभा ने कावेरी नदी पर कर्नाटक द्वारा प्रस्तावित मेकाडातु परियोजना का विरोध करते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव पेश करते हुए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने सदन के सभी सदस्यों से इस प्रस्ताव का सर्वसम्मति से समर्थन करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेकाडातु परियोजना मौजूदा कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करती है और कावेरी जल पर तमिलनाडु के अधिकारों का हनन करेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने रविवार को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक नीट UG की पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू किया है। NTA ने स्पष्ट किया है कि सभी आधिकारिक व्हाट्सएप संदेश केवल उसके सत्यापित नंबर 9178279802827 के माध्यम से भेजे जाएंगे। एजेंसी ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि NTA से भेजे गए किसी भी संदेश पर भरोसा करने से पहले नीले सत्यापन चिन्ह और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नाम की जांच कर लें। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 62वें सत्र में जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की पहली सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और हमेशा रहेगा। उन्होंने पाकिस्तान पर घरेलू चुनौतियों और आतंकवाद को निरंतर समर्थन देने से ध्यान भटकाने के लिए दुष्प्रचार का आरोप लगाया। आज राष्ट्रीय पठन दिवस है। ये दिन प्रतिवर्ष केरलम में पुस्तकालय आंदोलन के जनक पुथुवाइल नारायण पणिकर की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वर्ष 2017 में प्रधानमंत्री मोदी ने कोच्चि यात्रा के दौरान राष्ट्रीय पठन दिवस और पठन माह से जुड़े कार्यक्रमों का शुभारंभ किया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी।
1: इंडियन कैंसर सोसाइटी कहने आए हैं ये बात, कैंसर को हराना है हमारे साथ, कैसे इससे लड़ना है सुनो हमारी बात, क्योंकि कैंसर नहीं है लाइलाज, दुख में सुख में हम हैं आपके साथ, इंडियन कैंसर सोसाइटी।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं अनुभा मित्तल, एक कैंसर सर्वाइवर और इंडियन कैंसर सोसाइटी की वॉलंटियर हूँ। हमारी संस्था एक वॉलंटियर आधारित संस्था है जो पिछले लगभग 40 वर्षों से कैंसर के क्षेत्र में जागरूकता के लिए काम कर रही है। हमारी संस्था न केवल समाज में कैंसर को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास करती है, बल्कि कैंसर से पीड़ित लोगों को भावनात्मक और आर्थिक सहायता भी प्रदान करती है। हमारी आज की वार्ता इंडियन कैंसर सोसाइटी के सौजन्य से प्रस्तुत की जा रही है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है, कैंसर के सामान्य रिस्क फैक्टर्स यानी जोखिम कारक, विशेष रूप से ऐसे रिस्क फैक्टर्स जिन्हें हम बदल नहीं सकते। जब भी कैंसर की बात होती है तो हमारे मन में बहुत सवाल आते हैं, जैसे क्या कैंसर केवल धूम्रपान करने वालों को होता है, क्या अगर परिवार में किसी को कैंसर था तो मुझे भी होगा, क्या बढ़ती उम्र के साथ कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या हर रिस्क फैक्टर जोखिम कारक हमारे नियंत्रण में होता है। आज की वार्ता में हम इन सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जोखिम कारक होते क्या हैं। जोखिम कारक या फिर रिस्क फैक्टर्स, उनका मतलब है कोई ऐसा कारण या ऐसी परिस्थिति जो किसी व्यक्ति में कैंसर के होने की संभावना को बढ़ा सकता है। ध्यान रखिए, जोखिम कारक का होना और कैंसर का होना दोनों अलग बातें हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी व्यक्ति में कोई जोखिम कारक मौजूद है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे निश्चित रूप से कैंसर होगा। उसी तरह कभी कभी बिना किसी जाने पहचाने जोखिम कारक के भी किसी व्यक्ति को कैंसर हो सकता है। इसलिए जोखिम कारक केवल कैंसर की संभावना बढ़ाते हैं, उनका भविष्य तय नहीं करते। जोखिम कारक दो प्रकार के होते हैं, मॉडिफाइएबल एंड नॉन मॉडिफाइएबल रिस्क फैक्टर्स। मॉडिफाइएबल यानी परिवर्तनीय जोखिम कारक, ऐसे रिस्क फैक्टर्स जिन्हें हम बदल सकते हैं, जैसे तंबाकू या शराब का सेवन, अस्वस्थ खानपान, शारीरिक निष्क्रियता आदि। दूसरे हैं नॉन मॉडिफाइएबल रिस्क फैक्टर्स यानी गैर परिवर्तनीय जोखिम कारक, ऐसे रिस्क फैक्टर्स जिन्हें हम बदल नहीं सकते, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। आज हम इन्हीं गैर परिवर्तनीय जोखिम कारकों की चर्चा करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि कैंसर का सबसे बड़ा जोखिम कारक क्या है, तो शायद कई लोग बोलेंगे धूम्रपान या तंबाकू। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो सबसे महत्वपूर्ण जोखिम कारकों में से एक है

या उससे अधिक आयु के लोगों में अधिक देखे जाते हैं। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि युवा लोगों में कैंसर नहीं हो सकता। कुछ कैंसर बच्चों, किशोरों और युवाओं में भी देखे जाते हैं। हमारा दूसरा रिस्क फैक्टर है फैमिली हिस्ट्री, यानी पारिवारिक इतिहास। एक सबसे कॉमन क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है, मेरे परिवार में किसी को कैंसर था, क्या मुझे भी कैंसर होगा? आंसर है नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं। लेकिन कुछ मामलों में पारिवारिक इतिहास रिस्क को बढ़ा सकता है। यदि माता पिता, भाई बहन या निकट संबंधियों में कुछ प्रकार के कैंसर रहे हों, तो रिस्क सामान्य जनसंख्या की तुलना में थोड़ा अधिक हो जाता है। विशेष रूप से स्तन कैंसर, ओवेरियन कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर जैसे कुछ कैंसरों में पारिवारिक इतिहास की भूमिका देखी गई है। हालांकि अधिकांश कैंसर सीधे विरासत में नहीं मिलते, यानी परिवार में कैंसर हिस्ट्री का होना कैंसर होने की गारंटी बिल्कुल नहीं है। अब हम बात करते हैं जेनेटिक्स की। हम सभी अपने माता-पिता से जीन्स प्राप्त करते हैं। कुछ केसेस में माता-पिता से मिलने वाले जीन्स में ऐसे बदलाव हो सकते हैं जो व्यक्ति में आगे चलकर कुछ प्रकार के कैंसर की संभावना बढ़ा देते हैं। जैसे कुछ परिवारों में ब्रेस्ट या ओवेरियन कैंसर कई पीढ़ियों में बार बार देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। इनहेरिटेड मतलब कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने वाले कैंसर सभी कैंसरों का केवल एक बहुत छोटा हिस्सा होते हैं। अधिकांश कैंसर जीवन के दौरान विकसित होने वाले परिवर्तनों के कारण होते हैं, ना कि जन्म से जीन परिवर्तनों के कारण। इसलिए केवल जेनेटिक्स शब्द सुनकर घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमारा फोर्थ रिस्क फैक्टर है लिंग, जेंडर। कुछ पुरुषों या महिलाओं में कुछ कैंसर अधिक सामान्य हो सकते हैं, जैसे महिलाओं में स्तन और सर्वाइकल गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर अधिक देखा जाता है, वहीं पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर विशेष रूप से पाया जाता है। कुछ कैंसर दोनों में हो सकते हैं, लेकिन उनकी आवृत्ति अलग-अलग हो सकती है। यह अंतर हार्मोन, शरीर की संरचना और बायोलॉजिकल कारणों से जुड़ा होता है। यदि आप भारत जैसे बड़े और विविध देश को देखें, तो कुछ प्रकार के कैंसर कुछ क्षेत्रों या समुदायों में अधिक देखे जाते हैं। जैसे कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में भोजन की कुछ पारंपरिक आदतों और अन्य स्थानीय कारणों के चलते भोजन नली यानी ईसोफेगस के कैंसर के मामले देश के कई अन्य हिस्सों की तुलना में अधिक देखे गए हैं। इसी प्रकार उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर के कैंसर की दर अपेक्षाकृत अधिक पाई गई है। हालांकि ये समझना बहुत जरूरी है कि केवल किसी क्षेत्र या समुदाय से संबंध होना कैंसर होने का प्रमाण नहीं है। इसके पीछे अनुवांशिक कारणों के साथ साथ खान पान, वातावरण और अन्य स्थानीय परिस्थितियां भी भूमिका निभा सकती हैं। इस तरह के अंतर हमें कैंसर के कारणों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के भविष्य का निर्धारण नहीं करते। आई एम श्योर आप ये सोच रहे होंगे कि क्या गैर परिवर्तनीय जोखिम कारक होने का मतलब कैंसर होना हमें तय है? बिल्कुल नहीं। यह बात मैं विशेष रूप से दोहराना चाहूंगी। यदि आपकी उम्र बढ़ रही है, परिवार में कैंसर का इतिहास है या आपके परिवार में कोई जेनेटिक चेंज मौजूद है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपको निश्चित रूप से कैंसर होगा। इसी तरह जिन लोगों में ये जोखिम कारक नहीं है, उन्हें भी कैंसर हो सकता है। कैंसर एक जटिल बीमारी है जिसमें कई कारक मिलकर भूमिका निभाते हैं। अब सवाल ये आता है कि अगर कुछ रिस्क फैक्टर्स हमारे नियंत्रण में नहीं है, तो क्या हम हाथ पर हाथ रखे बैठ जाएं? बिल्कुल नहीं। यहीं पर जागरूकता सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि किसी व्यक्ति में गैर परिवर्तनीय जो

0: जोखिम कारक मौजूद हैं, तो उसे चाहिए कि वो अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें, शरीर में होने वाले असामान्य बदलावों पर ध्यान दें, नियमित स्वास्थ्य जांच करवाएं, डॉक्टर की सलाह के अनुसार कैंसर स्क्रीनिंग करवाएं, तंबाकू और शराब जैसे जोखिमों से दूर रहें, संतुलित आहार और सक्रिय जीवन शैली अपनाएं, व्यायाम करें, वॉक करें, जिम करें, अपनी बॉडी को मूव करें। क्योंकि भले ही हम अपनी उम्र या अनुवांशिक संरचना नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपने स्वास्थ्य संबंधी निर्णयों को अवश्य प्रभावित कर सकते हैं। हमारी आज की चर्चा के तीन महत्वपूर्ण संदेश हैं। सबसे पहला, जोखिम कारक होना और कैंसर होना एक ही बात नहीं है। दूसरा, उम्र, पारिवारिक इतिहास, कुछ अनुवांशिक बदलाव और जेंडर जैसे कुछ जोखिम कारक ऐसे हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता। जागरूकता, समय पर जांच और स्वस्थ जीवन शैली कैंसर से लड़ाई में हमारी सबसे बड़ी ताकत है। कैंसर पे अधिक जानकारी के लिए आप हमारी मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका नाम है राइज अगेंस्ट कैंसर। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9910516562 पर भी कॉल कर सकते हैं। यदि आप अपने स्वास्थ्य संबंधी जांच कर्म कीमतों पर करवाना चाहते हैं, इंडियन कैंसर सोसाइटी का एक डिटेक्शन सेंटर है जो 42 बाबर रोड, बंगाली मार्केट के पास नई दिल्ली में स्थित है। ये केंद्र हर रोज सोमवार से शुक्रवार 9 से 12 बजे तक खुला रहता है और यहाँ महिला और पुरुष दोनों डॉक्टर्स हैं। यहाँ का टेलीफोन नंबर है 011-23-71-6941। मैं नंबर रिपीट करूंगी, 011-23-71-6941। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे वेबिनार्स, सेमिनार्स, सपोर्ट ग्रुप मीटिंग्स और सेलिब्रेशंस का हिस्सा बन सकते हैं। जाते जाते मैं ये जरूर बोलना चाहूंगी कि कैंसर के बारे में जानकारी डर पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि जागरूकता बढ़ाने के लिए होती है। जितना अधिक हम समझेंगे, उतना ही बेहतर निर्णय ले पाएंगे। स्वस्थ रहें, सजग रहें और अपने प्रियजनों को भी कैंसर संबंधी सही जानकारी अवश्य दें। अगले शुक्रवार को फिर मिलेंगे अधिक जानकारी के साथ। नमस्कार।
1: इंडियन कैंसर सोसाइटी कहने आए हैं ये बात, कैंसर को हराना है हमारे साथ, कैसे इससे लड़ना है सुनो हमारी बात, क्योंकि कैंसर नहीं है लाइलाज, दुख में सुख में हम हैं आपके साथ, इंडियन कैंसर सोसाइटी।

गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो। और कार्यक्रम का जो वक्त है वो बिल्कुल सही है, और कार्यक्रम जो है ये शुक्रवार को आता है और महीने के तीसरे शुक्रवार को आता है, क्योंकि बहुत से लोग मुझे ऑलरेडी व्हाट्सएप मैसेज करके अपनी चॉइसेस भेज रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी पसंद का गाना बजाएं। तो आज वो फरमाइश तो पूरी नहीं होगी, लेकिन आप इस कार्यक्रम में बिंदास बोल सकते हैं, बिंदास अपनी बात रख सकते हैं। और किस विषय में रख सकते हैं ये बता देता हूँ। ये कार्यक्रम है बिंदास बोल, जहाँ पर हम आपसे फीडबैक लेते हैं, आपकी पसंद नापसंद का हमें पता चलता है फर्स्ट हैंड। आप हमें ईमेल के द्वारा मेल लिख के हमें बताते हैं, और ऐसे कुछ मेल्स मेरे पास शॉर्टलिस्टेड हैं इस समय, और चाहे तो राइट नाउ ऑल्सो अगर आप जुड़े हैं तो आप मैसेज भी कर सकते हैं 9868107070 पर। तो इस सफर में हमारे साथी बनिए, बिंदास बोल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और अपनी बात कहिए, कौन से आर्टिस्ट पसंद हैं, कौन से ज्यादा पसंद हैं और कौन से सबसे ज्यादा पसंद हैं।

सवाल बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि क्या होता है ना कि सवाल भूलने से जवाब की तैयारी नहीं हो पाती है जनाब। और अक्सर आपने देखा होगा जिंदगी में जिस सवाल के जवाब की आप तैयारी करते हैं, कुछ समय बाद जिंदगी सवाल ही बदल देती है बाबू मोशाय। इसीलिए तो सवालों और जवाबों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, मैसेजेस का, आपके ईमेल्स का। कार्यक्रम बड़ा खास है बिंदास बोल, जहां पर हम लेते हैं आपका फीडबैक, आपकी पसंद नापसंद। जैसे प्रिंस बहल ने लिख के भेजा है, प्रिंस बाहल, आई शुड करेक्ट माई सेल्फ, हसनपुर अमरोहा उत्तर प्रदेश से। जनाब आपने मैसेज किया है, आपकी ईमेल मेरे पास पहुंच गई है। वैसे तो मैं कार्यक्रम में आपकी ईमेल आखिर में लेने वाला था, क्योंकि वो इसी तरह से सूचीबद्ध हुई थी उसमें, बट क्योंकि आप बहुत ज्यादा बेसब्री दिखा रहे हैं तो आपसे ही आगाज कर लेते हैं। क्या क्या कहते हैं भाई? आप लिखते हैं कि मैंने अपने ईमेल में बहुत कुछ लिखा था, कुछ ऐड भी करना चाहता हूं कि रेनबो जीनियस प्रोग्राम में कुछ लिसनर्स एक ही क्वेश्चन को आरजे से बार बार रिपीट करने को कहते हैं। अरे भाई ऐसे कैसे करते हैं आप? हैं नहीं। मतलब आप बेसिकली क्या करना चाह रहे हैं, आप ये बताना चाह रहे हैं कि हम अपने कार्यक्रम को और अच्छा कैसे बना सकते हैं। तो देखिए ऐसा होता है कई दफा, क्वेश्चन हमने पूछा, उनको ठीक से आवाज नहीं आई, या फिर ध्यान कहीं चला गया, या कोई शब्द उन्हें सही नहीं समझ आया, तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसको दोबारा दोहराए, आगे आप पूछते हैं, जबकि वो सवाल उनको अच्छे से समझ आ चुका होता है। अब ये आपको कैसे पता? भाई प्रिंस मेरे को ये बात बताओ, उत्तर प्रदेश से आप तो सर्वव्यापी होते जा रहे हैं, आप दूसरे की कॉपी होते जा रहे हैं, उसकी प्लेट में कौन सी डिश है वो भी आपको पता चल जाता। अच्छा बताओ, मैंने अभी कार्यक्रम शुरू करने से पहले गला ठीक करने की कौन सी गोली खाई है, चलो ये बताओ, जानते हैं आपकी पावर्स, देखते हैं। अच्छा आगे कुछ भी लिखते हो, जबकि उन्हें ये बात उनको समझ आ गई होती है, और फिर वो आरजेस को अपनी बातों में बिजी कर लेते हैं, और फिर क्वेश्चन को गूगल

करते हैं, सर्च करते हैं और इस तरह से, अरे भैया ये तो आप अपनी कहानी बता रहे हो ना, आप नहीं ऐसा करते हो, चलो अच्छा करते हो। हम देखिए क्या होता है कार्यक्रम में, हम देख नहीं सकते आपको, हम इस चीज को मान के चलते हैं कि हम आपसे ईमानदारी से कोई सवाल कर रहे हैं तो उसका आंसर आप ईमानदारी से देंगे। अगर आप थोड़ी सर्च करके कहीं से कुछ अगर जवाब लेना चाहते हैं, विच इज अगेंस्ट द प्रोग्राम, ऐसा होना नहीं चाहिए, फिर आप कहते हैं कि भाई इसके अंदर बहुत से लोग हैं जो नाम बदल के भी बात करते हैं, ये शिकायत बहुत से लिसनर्स को रही है। अब हम इसका क्या इलाज निकाल सकते हैं, हमें बताइए ना। हम कोशिश करते हैं, हम कहते रहते हैं कि आप बार बार प्रयास ना करें, सभी को मौका दिया जाए। और एक बार फिर से मैं दोहराता हूं कि प्रिंस हसनपुर से कह रहे हैं, भाई नाम बदल के बात नहीं कीजिएगा, सवाल को एक बारी में समझ लीजिए, आंसर को कॉपी मत कीजिए। और सर आपकी तरफ से कुछ और कहना है, हुनते खुश हो गए हो, हम तो आप ही के लिए बैठे हैं, आपकी सेवा में हाजिर। ये छोटी सी नाचीज आवाज है रंजन की, कार्यक्रम है बिंदास बोल आकाशवाणी रेनबो का, 90 वर्षों का स्वर्णिम इतिहास। एक दो तीन नहीं, पूरे 50-100 मैसेज भेजिए, 50-100 ईमेल्स भेजिए, हम आपके साथ हैं तत्पर, आकाशवाणी के रथ पर।

सादर प्रणाम हमें लिख के भेजा है आदरणीय प्रस्तुतकर्ता जी, थैंक यू सो मच, आपको भी सादर प्रणाम। पैरी पौना मैं क्या जी, ऐसा कह सकता हूँ ना, क्योंकि आप हैं सुदर्शन मुखी, अनीता एंड सिमरन मुखी सोनीपत शांति नगर से लिखती हैं, बाकायदा सभी लिख रहे हैं राधा, कि 15/5 का कार्यक्रम बिंदास बॉल जो था उसमें केवल हमारे एक मेल को शामिल किया गया और वो भी आधा अधूरा। सीरियसली आप बताइए, नहीं सीरियसली आप सही कह रहे हैं क्या? हाँ, अगर ऐसा हुआ है तो 15 मई के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपकी बात कोई नहीं सुनता पूरी तो आप भी कीजिए आधी अधूरी। ये तो जुमला हो गया, ये बता दो, ये तो एक तरह का शेर हो गया। नहीं, मैं आई कैन अंडरस्टैंड, बट देखिए वक्त की थोड़ी सी पाबंदी होती है। मुझे भी देखिए इस समय बहुत सारे मैसेजेस लेने का मन कर रहा है, मैं भी बड़ा लालची फील कर रहा हूँ कि मैं ढेर सारी मेल्स आपकी लूँ, क्योंकि देखिए आप प्रयास करते हैं, हम उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। कई बार क्या होता है, कुछ चीज़ों को हमें संक्षेप में कहना पड़ता है, थोड़ा छोटे में उसको बोलना पड़ता है, क्योंकि लिखने को आओ तो आप, हो सकता है कई लोग लिखने बड़े अच्छे होते हैं, 10 पेज की ईमेल लिख दें, है ना, तो वो थोड़ा सा आप हमारे साथ एडजस्ट कीजिए, बाकी आपकी बात पहुंचाएंगे। अब मैं पूरी कोशिश करता रहा हूं, आगे आप लिखते हैं कि इस कार्यक्रम को साप्ताहिक कर दीजिए या फिर दो प्रस्तुतकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अभी एक की तो आवाज पूरी पहुंच नहीं रही है, आपको दूसरा क्या होता है ना, देखिए कुछ इनिशियली हमने देखा वो कैंसर रिलेटेड आप स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम सुन रहे थे, तो उसको भी हमें जगह देनी है। और ऐसा ही एक मेल किसी और ने भी लिख के भेजा हो, थोड़ी देर में उसको भी बात करूंगा। वो कह रहे हैं कि नॉन स्टॉप जो प्रोग्राम आता है उन्हें बड़ा पसंद आता है, सुबह 9 से 10 बजे का, तो उसके अंदर फिर ये आरजेस क्यों बात करते हैं। बात तो आपकी सही है सर, ये बात भी मैं बताऊंगा और इसका कारण भी समझाऊंगा, बट इस गाने के बाद कीजिए थोड़ा सा

इंतजार, कुछ एक मैसेज लेते हैं। उमेश कुमार खयाला से लिख के भेज रहे हैं, नमस्ते, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। और कुछ आरजेस मैसेज नहीं लेते, आप हमारा मैसेज शामिल करते हैं, थैंक यू सो वेरी मच। अब जो मैसेज वाला प्रोग्राम होगा उसमें जरूर शामिल किए जाएंगे, आपके मैसेजेस भी लिए जाते हैं। बाकी एक बात का यकीन मानिए, हमारा प्रयास आपके साथ होता है, हम 100% नहीं 110% आपकी खुशी के लिए काम करते हैं।

0: जी हाँ, मैं बात कर रहा था कृष्ण कुमार मिश्रा जी की, जिन्होंने दिल्ली से ईमेल लिख के भेजा है और कहते हैं कि सर मैं दिल्ली में रहता हूँ, कृष्ण कुमार नाम है, एफएम रेनबो लगभग एक दशक से सुनता आया हूँ, लेकिन मुझे आपका एक शो जिसका नाम है दिल के तराने, गाने नए पुराने, रोजाना 9 से 10 बजे तक चलता है, ये मुझे बड़ा पसंद है और इसमें आप लोग बोलते हैं कि नॉनस्टॉप म्यूजिक है, तो फिर बीच में आरजेज आ जाते हैं और ऐड भी चला देते हैं और आप नॉनस्टॉप को नॉनस्टॉप रहने ही दीजिए, आप लोग रिप्लाई भी नहीं देते हो, फीडबैक मांगते हो। हम दसो, नहीं नहीं कृष्ण जी, मैं क्या जी, कृष्ण कुमार जी हमने आपसे फीडबैक मांगा, आपके मेल का बकायदा प्रिंट आउट मेरे हाथ में है, सबूत है मेरे सामने और मैं आपकी बात का जवाब भी दे रहा हूं। देखिए हाँ, यू राइट, इट इज अ नॉन स्टॉप, टेक्निकली नॉन स्टॉप नहीं है, लेकिन इसमें बेहतरीन बिना बाधा के, कम से कम बाधा के आपको गाना सुनाने का हमारा वादा रहता है। बीच में जैसे मौसम का क्या हाल चाल है, कुछ बारिश हो गई है या फिर ट्रैफिक की कुछ जानकारियां जरूर आरजेस देते हैं। और जहां तक बात है एड्स या फिर प्रोमोस बजाने की, यानी एडवर्टीजमेंट्स जो बजती हैं या हमारे बाकी कार्यक्रमों के बारे में हम जानकारी देते हैं, तो वो भी आप अधिकार अगर हमसे छीनना चाहते हैं तो फिर मैं इतना ही कहूंगा कि अभी एक ब्रेक लेता हूं, लौट के आऊंगा। सर ये मजबूरी होती है, बट हाँ आपकी बात ठीक है, एंटायरली उसे नॉनस्टॉप कहना सही नहीं होगा, बट अब देखिए अपना अपना मिजाज है, आपकी बात हमने सुन ली, आपने हमारी बात समझ ली, तो बात यहां खत्म करें कि नहीं? अगर फिर भी मन हो तो कुछ मैसेज लिख के भेजिएगा, क्योंकि ये आपका ही प्लेटफॉर्म है, बिंदास बोल में आपकी बात बिंदास तरीके से रखी जाती है और समय का हमें पता ही नहीं चलता, बस आपकी बातों के अंदर हम ऐसे शुमार हो जाते हैं, खो जाते हैं। 9868107070 पर मैसेज कीजिए, छोटा सा ब्रेक, लौट के आते हैं।
1: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
2: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा। हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी ओटीपी आधारित सुरक्षित डिलीवरी, बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
4: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
3: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
4: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल

0: डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
1: और विनर्स को क्या मिलेगा?
0: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
2: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
3: www.delhitalenthunt.com। कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
4: ताजी ताजी, महकी महकी, जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
5: पता का चाय, गजब का स्वाद।
6: हे, तुम्हें पता है, पिछले 12 सालों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के रक्षा क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है। स्वदेशी उत्पादन और रक्षा निर्यात को बढ़ावा देकर भारत आत्मविश्वास के साथ रक्षा क्षेत्र के भविष्य का निर्माण कर रहा है।
7: बिल्कुल, रक्षा क्षेत्र में रक्षा मंत्रालय भारतीय कंपनीज को भारत में ही विश्व स्तर की तकनीकों के डिजाइन, विकास और निर्माण के लिए प्रोत्साहित कर रहा है।
6: हाँ, सही है, इस बदलाव में HAL हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड अग्रणी भूमिका निभा रहा है। स्वदेशी लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों से लेकर प्रशिक्षक परिवहन विमान और उन्नत एरोस्पेस प्रणालियों के माध्यम से ये भारत के रक्षा भविष्य को मजबूत बना रहा है।
7: और सबसे खास बात, HAL ने प्राइवेट इंडस्ट्री और हजारों MSMEs को जोड़कर देश में एक मजबूत एरोस्पेस इकोसिस्टम भी तैयार किया है।
6: इस तरह भारतीय प्रतिभा, तकनीक और संकल्प के बल पर हर नवाचार भारत को आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ा रहा है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
8: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
9: कोयल सी तेरी बोली,
10: आय हाय,
9: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
10: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
9: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
10: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
11: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
8: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

एक बार पुनः आपका स्वागत है, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं बिंदास बोल, मैं हूं आपके साथ रंजन। मेरे साथ इस समय मैसेज है भगवती जी का कि लिखती हैं कि पहले तो आप हमारे मैसेज पढ़ते थे, गाने भी सुनाते थे, पर अब ऐसा क्यों नहीं मालूम नहीं। और मुझे तो एफएम सुनते हुए सालों हो गए हैं, पर अब कई प्रोग्राम बदल गए हैं। कुछ अच्छे हैं और कुछ नापसंद। उनका आपने जिक्र नहीं किया, अपना नाम आपने लिखा नहीं, फिर आप कहते हैं नाम हम पढ़ते नहीं। नाम ढूंढने के लिए मुझे आपको सैटरडे के मैसेज में जाना पड़ा, पीछे जाके पुराने मैसेज में आपका नाम ढूंढ के लाया। बताओ, इतनी मेहनत मैं कर रहा हूं ना भगवती जी, फिर आप इस तरह से कैसे कह सकते हैं? मेरे प्रयास में कोई कमी हो तो फिर बताओ जी। नमस्कार जी, शुभ दोपहर। दुर्गेश नागनपुरे लिख रहे हैं, ग्राम जसवाड़ी, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश से। हमें आकाशवाणी रेनबो दिल्ली के सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। और जनकपुरी से हमारे पास एक मैसेज आया है, वो कहाँ चला गया मैसेज? वो ये कह रहे हैं कि एक तो कव्वालियों का प्रोग्राम आप शुरू कीजिए और साथ में पंजाबी गीतों का पूरे एक एक घंटे के लिए। देखिए, ये सुझाव हम दे देते हैं, बाकी आप गाए बगाए दिन भर में हर प्रोग्राम के अंदर एक ना दो तीन इस तरह से पंजाबी गीत तो सुनते ही रहते हैं। और वैसे गीतों की देखिए अपनी एक खासियत होती है, अपना एक चार्म होता है, अपना एक मूड होता है। जैसे अगला गाना मैं आपके लिए जो प्ले कर रहा हूं, सोनू निगम की मखमली आवाज। इसमें क्या होता है कि जब आपको किसी चीज से बहुत लगाव हो जाता है, चाव हो जाता है, प्यार हो जाता है, तो अनायास ही आपकी हंसी छूट जाती है। सुनाता फिर कुछ ऐसी बातें हो रही हैं। लौट के आऊंगा थोड़ी देर में, आपकी बातें और भी करनी है, क्योंकि कार्यक्रम है बिंदास बोल आकाशवाणी रेनबो पर, जहां पर आप खोल देते हैं सभी आरजेज और उनके कार्यक्रम।

इरशाद जहां नजीरा लिख रहे हैं असम से, आकाशवाणी के पूरे परिवार को नमस्कार व बहुत बहुत बधाई। देखते ही देखते 8 जून जो अभी हाल ही में बीता है 2026 को 90 साल की हो गई आकाशवाणी। थैंक यू सो वेरी मच, आपने हमारे बर्थडे को याद रखा। और देखिए हम मिलते मिलाते कब 90 के हो गए हमें पता ही नहीं चला। महते उन्हें जवान है वैसे, महते यंग है का, बट हाँ ऐसे सिलसिला बनता रहता है, आवाजें नई और पुरानी, नूतन पुरातन, यू नो व्हाट यू कॉल दैट, नए पुराने आवाजें आती रहती हैं, लेकिन आकाशवाणी का सफर निरंतर जारी है और ये आगे भी बढ़ता रहेगा। आपने लिखा है कि देश की हर घटना में चाहे क्रिकेट, हॉकी या फुटबॉल हो, अपनी उपस्थिति दर्ज कराती आई है आकाशवाणी। और कमेंट्री के रूप में कभी हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू के समाचार और इन सब ने तो लोकप्रियता के रिकॉर्ड बना दिए। देखते ही देखते पूरे देश की आवाज बनता गया। अपने प्रोग्रामों में हर वर्ग के लोगों को शामिल किया, किसानों को, मजदूरों को, महिलाओं को और जवानों को स्थान दिया। वाह जी वाह, तुसी तो बिल्कुल पूरा हिसाब किताब रखते हो। इरशाद जहां जी, आपने तो पूरा हिसाब रखा हुआ हमारा। अब उनके नाती पोते और उनकी आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचा रहे हैं और वहां तक भी आवाज जारी है और चारों ओर बस आकाशवाणी ही आकाशवाणी की गूंज है। खुदा करे कि दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की करते रहें और आपका परचम लहराता रहे। थैंक यू सो वेरी मच, और आपके बिना ये पॉसिबल नहीं है। और हमारे पास ढेर सारे मैसेजेस की झड़ी लग रही है। अच्छा मुझे ये बताओ, आप लोग कौन हो जो बार बार मेरे से गाना रिक्वेस्ट कर रहे हो? आज मेरे वाला सॉन्ग नहीं आ रहा है, मतलब मेरी आवाज़ सुनने के बाद भी मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, बिंदास बोले। चले कोई बात नहीं, अब देखिए यही तो प्यार है। हमने आपकी कोई भी खता भी अगर आप करते हैं तो वो भी आपकी अदा है। अभी देखिए आपने नाम लिखा है क्रिया और आपके पिछले मैसेज में नाम है जिया। अब देखो आप मैसेज भेजते हो इतने स्पीड में होते हो कि आपने मैसेज ऑटो करेक्ट होके वो अनकरेक्ट हो गया, तो अपना सही नाम दोबारा से लिख के भेजिए। आप लिख रहे हैं कि मैं लंबे टाइम बाद ये शो सुन रही हूँ एंड दिस इज माय फेवरेट, और मुझे मैसेज मसाला मिक्स, रेनबो जीनियस बहुत अच्छे लगते हैं। लास्ट 3 वीक्स से रेनबो जीनियस में जो प्रेजेंटर हैं बहुत अच्छा शो किया है उन्होंने, और लेकिन एग्जैक्टली डेट याद नहीं, लेकिन एक बार शो में एक कॉलर को 2 टाइम लिया गया था। थैंक यू सर। ओके, तो ऐसी शिकायतें रहती हैं, वो बात है ना। अब देखिए हमने आपके ऊपर ईमानदारी से छोड़ दिया कि आप एक दफा ट्राई करेंगे, आप दोबारा से ट्राई करें, नाम बदल लें, तो उसके लिए आरजे के पास इतना समय नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास और भी बड़ी सारी चीजें होती हैं आपके मनोरंजन के लिए, आपकी जानकारी देने के लिए और प्यार प्यारे गाने बजाने के लिए, जस्ट लाइक द नेक्स्ट वन। आप सुन रहे हैं महीने के तीसरे शुक्रवार को आने वाला खास कार्यक्रम बिंदास बोल, जहां पर आप ही खोलते हैं हमारे कार्यक्रमों और आरजेस की पोल इन अ गुड वे।

0: जान का मैसेज आया है दिल्ली टैगोर पार्क से, उन्हें रेनबो के सभी कार्यक्रम पसंद हैं। थैंक यू शान। और बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, 10 बजे हुए 12 बजे का प्रोग्राम ना पसंद है, फोनिंग प्रोग्राम चालू करें प्लीज। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं जो 10 बजे आता था जहाँ पे आप फोन्स करते थे, फिर उसके बाद मैसेजेस वाला जो प्रोग्राम था उसे आप वापस से चाहते हैं, तो हम ये अपने आपकी जो बात है अपनी अथॉरिटीज तक, अपने अफसरान तक पहुँचा देंगे। जो लोग कार्यक्रम में कोई रूपरेखा बनाते हैं या किस तरह से कौन से कार्यक्रम कब चलेंगे या नहीं चलेंगे, वो सब समय समय पर आप देखिएगा। कुछ कार्यक्रम अगर हम थोड़े समय के लिए विराम लेते हैं तो वापस से फिर लेके आते हैं। तो यही तो है पब्लिक डिमांड, यही तो है बिंदास बोल। और जो आता है महीने के तीसरे शुक्रवार, अब याद रहेगा नहीं? ओके जी, 2005 और 6 से हम आपके कार्यक्रम को सुन रहे हैं लगातार। ठेरोन सेंगहो नाम लिखा है आपने, जगह आप लिखते तो हमें और अच्छा लगता। कंचन सोनिया बिहार से लिखती हैं कि कैसे हैं आप, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, मेरा वाला सॉन्ग में दिल है तुम्हारे का सॉन्ग सुना दीजिए। सोनिया बिहार से कंचन जी, हम बार बार दोहरा चुके हैं आज मेरे वाला सॉन्ग नहीं है, बिंदास बोल है, तो मेरी पसंद के गानों से काम चलाइए। ठीक है, फिर भी कोशिश करूंगा, कई बार होता है आपकी पसंद मेरी पसंद, मेरी पसंद आपकी पसंद, हमारी सबकी पसंद एक ही पसंद होती है, तभी तो हम एक स्टेशन पे मिलते हैं जो है आकाशवाणी रेनबो। सरफराज आलम लिख रहे हैं जोगी हाट दर्शना अरेरिया बिहार से, बड़े सारे आर्टिस्ट के नाम देखिए, अब आया ना मजेदार क्या कहते हैं मैसेज, क्योंकि अगर आप कुछ आर्टिस्ट के नाम लिखें तो उनको अच्छा लगता है। इस समय सारे आर्टिस्ट अपने काम छोड़ के बैठ जाते हैं और सुनते हैं हमारे हमारे बारे में, हमारे लिसनर्स क्या सुनते हैं, समझते हैं, सोचते हैं। ये लिखते हैं जी, रेनबो का नियमित श्रोता हूं, मैसेज मिसाला मिक्स, म्यूजिक मस्ती, आपकी याद आती रही, रंगे महफिल, रेनबो जिनिस जैसे कार्यक्रम मुझे बहुत पसंद है, आरजे रंजन, आरजे प्रियंका मामगेन, आरजे अथर सईद, आरजे रेशमा फारूकी, आरजे भगवती, आरजे नीरजा चतुर्वेदी, आरजे वीरदमन, आरजे, अच्छा मैं एक बारी में पढ़ दूं, आरजेस, ओके, प्रवीण शर्मा, आरजे राजेश कुमार, और सभी आरजेस की प्रस्तुति सराहनीय है। आरजे प्रज्ञा तिवारी है या स्टूडियो स्टाफ है ये मुझे नहीं पता भाई, ये बातें मैं एक्चुअली नहीं पता। तो यहाँ पे देखिए, जो आरजेस होते हैं वो कहीं ना कहीं या तो कार्यरत हैं, कहीं काम कर रहे होते हैं, तो हाउ डज इट मैटर, एक आरजे होता है। हाँ, आप अपनी पसंद बता दीजिए सर, उसमें सब चल जाएगा। जो गाने की आप बात कर रही हैं ना, ठीक है, सोनिया बिहार से आपने लिखा है कंचन जी, तो मैं अपनी पसंद का बताऊं, मैंने कुछ एक गाने क्यू कर रखे हैं, वो जरूर बजेंगे, लेकिन यहाँ छोटा सा ब्रेक लेंगे, लौट के आएंगे बस, और यूं गए और यूं आए।
1: Hey, did you know? Over the past 12 years, under the visionary leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi, India's defense sector has witnessed a remarkable transformation. From boosting indigenous manufacturing to strengthening defense exports, India is shaping the future of defense with confidence.
2: You are right. In the defense sector, the Ministry of Defense has been creating the right environment for Indian companies to design, develop and build world-class technologies right here at home.
1: Exactly. And one name that's leading this transformation is HAL, Hindustan Aeronautics Limited. From indigenous fighter aircraft and combat helicopters to trainers, transport aircraft and advanced aerospace system, HAL is helping build the future of India's defense.
2: HAL is bringing together private industry and thousands of MSMEs to create a powerful defense manufacturing ecosystem.
1: So, every innovation is taking India one step closer to an Atmanirbhar Bharat, powered by Indian talent, Indian technology and Indian determination.
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण

0: मैं माँ बनने वाली हूँ, बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
1: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
0: क्या ये जांच उपलब्ध है?
2: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
3: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है।
2: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
3: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
4: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
5: उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkounivy.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम में जिसका नाम है बिंदास बोल। मैं हूं आपके साथ रंजन और हमारे साथ हैं इस समय मैसेज ईमेल है इस समय रादर संजीव कुमार का और ये लिखते हैं विलेज खुखानी से चोगवान करनाल हरियाणा से और ये लिखते हैं कि आकाशवाणी के जो कार्यक्रम है हमें पसंद आते हैं और खासतौर से इन्होंने एक सेंसस ऑपरेशन 2027 के ऊपर 15 मई 2026 को जो कार्यक्रम हुआ था वो सुना था। ये अपनी एज भी आपने लिख के बताई है, बताइए मैं क्या करूँ। चलिए नहीं ऑन एयर नहीं बताता, मतलब ठीक है। और मैं उस दिन शायद यहाँ पे था, आप सही कह रहे हैं, और एक हफ्ते नहीं ये लगातार कुछ दो तीन हफ्ते शायद दो एक हफ्ते तो मेरे को याद है कि हमारे यहाँ बड़े यू नो एस्टीम

गेस्ट आए थे, बहुत सारे आईएएस अफसर आए थे. कुछ ये नाम आप यहाँ पे लिख रहे हैं, मुझे खुद उनसे मिलने का, हेलो हाय करने का मौका मिला था. और एक अलग ही एक रुतबा होता है, तभी तो माँ बाप कहते हैं पढ़ो लिखो कुछ बनो. तो क्या बनो वो तब समझ आता है जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं. आपको ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो वेरी मच. आपने अपने कॉलेज का भी यहाँ नाम लिखा है, आप यमुनानगर हरियाणा में एक कॉलेज में पढ़ते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, क्योंकि आपकी जो एज है वो पढ़ाने वाली है ना. इस एज में अगर आप पढ़ रहे हैं तो भी मुबारक हो आपको. और हाँ प्रिंस, आप क्यों नाराज हो गए, आप कह रहे हैं मैं दोबारा मैसेज नहीं करूंगा. आपने ये लिखा ना, आपने सजेशंस दिए, मैंने कोई आपके सजेशंस के ऊपर टिप्पणी नहीं की है. मैंने ये कहा है कि देखिए, जब कोई हमारे किसी भी कार्यक्रम में नाम बदल के अगर कॉल करता है तो हम सिर्फ ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप नहीं करें. और मैंने आपकी बात को दोहराया है, सबसे कहा है कि ऐसा नहीं करें. तो बताइए मैंने आपसे जुदा कौन सी बात कही है. इसीलिए तो कार्यक्रम नाम है बिंदास बोल. फिर से मैसेज कीजिएगा, बिल्कुल भी आपको नाराज होने की जरूरत नहीं है. और कुछ नाम यहाँ चलते चलते लेना चाहूंगा. उमेश कुमार, दिनेश कुमार, अनोज लिख रहे हैं ख्याला से, नहीं अभी नहीं जा रहा है, गाने के बाद फिर आऊंगा वापस. मोहम्मद रागिब रेजा का अररिया बिहार से मैसेज आया. ऐसे ढेर सारे मैसेजेस आए हैं. आप लोग एंजॉय कर रहे हैं कार्यक्रम, उसी को बढ़ाते हुए आगे आपके लिए गाना सुनिएगा, एंजॉय कीजिए.

जी हम भी चाहते हैं आप एलईडी की तरह ग्लो करें और आपकी जो चमक है जब आप किसी कमरे में पहुंचे किसी ऑफिस में जाएं तो सब आपको बस यूं ही देखते रह जाएं, क्योंकि there has to be an aura about you. मतलब आप जाएं तो सब कुछ पॉजिटिव हो जाए, ऐसा ही ऑरा लेके आए हैं वीर दमन सिंह. अगला कार्यक्रम रहेगा आशियाना 2 से 3. रंजन को यहाँ पर दीजिए इजाजत. आपके कुछ चलते चलते नाम लेना चाह रहा था लेकिन समय बिल्कुल भी इजाजत नहीं दे रहा है. मोहम्मद अब्बासी का कस्बा गुन्नौर से मैसेज आया है और भी बहुत से लोगों का मैसेज आया है. थैंक यू सो वेरी मच. कोलार रोड भोपाल से राम बाबू मालवीय का मैसेज आया है. बस अब समय इजाजत नहीं दे रहा. मैं आपसे मिलूंगा इन्हीं एयरवेव्स पर फिर कभी. यूं ही लिखते रहिएगा बिंदास बोल में. अगले महीने के 3rd फ्राइडे में फिर से मुलाकात होगी आपकी किसी और आवाज से या फिर मेरे से. टिल द टाइम वी मीट अगेन, टेक केयर.

नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त और इस सफर का हम सफर आरजे वीर दमन सिंह। आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 102.6 पर हमारा बेहद खास शो। जी हां, रेनबो डेस्टिनेशन, एक ऐसा शो जहां हम घर बैठे बैठे तय करते हैं मीलों का सफर और महसूस करते हैं भारत की धड़कन को।

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: जी हैं आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो 102.6 पर दिल से दिल तक।

दोस्तों, किसी ने सच ही कहा कि कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बानी। लेकिन हमारे देश में तो हर 100 किलोमीटर पर नजारे भी बदल जाते हैं। कहीं आसमान को छूते बर्फीले पहाड़ हैं, तो कहीं समंदर की लहरों का शोर, कहीं सदियों पुरानी इतिहास की कहानियां, और ये कहानियां सुनाता है तो कहीं अध्यात्म और शांति का सैलाब है। आज का हमारा ये सफर इसी तरह तरह की ये झांकियों का जो देश है, जो अलग अलग विविधता के नाम पर है, जहां अलग अलग देश और हमारे अपने देश के अंदर हर जगह अलग अलग तरह की विविधता देखने को मिलती है। और आज हम सबसे पहले रुख करते हैं उत्तर का। कल्पना कीजिए कि चारों तरफ सफेद बर्फ की चादर है, हाथ में गर्म हवा की प्याली और ढल झील में तैरता हुआ शिकारा। जी हाँ, मैं बात करता हूँ धरती के स्वर्ग कश्मीर की, ऊंट के गले की घंटियों की आवाज और मरुस्थल की हवा का झोंका। और अगर कश्मीर की ठंडक से थोड़ा आगे बढ़ें तो रंगीला राजस्थान आपका स्वागत करता है, जहाँ के आलिशान महल, जयपुर की हवा महल और जैसलमेर के सुनहरे रेत के टीले चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, पधारो मारे देश। समंदर की लहरों का शांत संगीत। और दक्षिण की ओर बढ़ें तो केरल के बैक वाटर्स में हाउस बोट की सवारी, गोवा के बीचेस की मस्ती, यही तो है हमारे भारत की असली खूबसूरती। जी हाँ, विविधता के अलग अलग रंग।

0: चाय बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
3: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
2: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
3: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
2: और विनर को क्या मिलेगा?
3: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
2: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
4: www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
5: हे, तुम्हें पता है पिछले 12 सालों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के रक्षा क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है। स्वदेशी उत्पादन और रक्षा निर्यात को बढ़ावा देकर भारत आत्मविश्वास के साथ रक्षा क्षेत्र के भविष्य का निर्माण कर रहा है।
6: बिल्कुल, रक्षा क्षेत्र में रक्षा मंत्रालय भारतीय कंपनीज को भारत में ही विश्व स्तर की तकनीकों के डिजाइन, विकास और निर्माण के लिए प्रोत्साहित कर रहा है।
5: हाँ, सही है, इस बदलाव में HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अग्रणी भूमिका निभा रहा है। स्वदेशी लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों से लेकर प्रशिक्षक परिवहन विमान और उन्नत एरोस्पेस प्रणालियों के माध्यम से ये भारत के रक्षा भविष्य को मजबूत बना रहा है।
6: और सबसे खास बात, HAL ने प्राइवेट इंडस्ट्री और हजारों MSMEs को जोड़कर देश में एक मजबूत एरोस्पेस इकोसिस्टम भी तैयार किया है।
5: इस तरह भारतीय प्रतिभा, तकनीक और संकल्प के बल पर हर नवाचार भारत को आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ा रहा है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
7: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

दोस्तों जी हाँ, आज हम रेनबो डेस्टिनेशन में बात कर रहे हैं पूरे भारत की, कि भारत में हम कहाँ कहाँ क्या क्या देख सकते हैं, घूम सकते हैं। और भारत का सफर तब तक अधूरा है जब तक आप यहाँ के लजीज जायके का मजा ना ले लें। जी हाँ, ये जायका जो होता है ना, ये अपने आप में ही मुंह में पानी ले आता है। और दिल्ली के चटपटे गोलगप्पों से लेकर दक्षिण के क्रिस्पी डोसे तक और बंगाल की मीठी रसगुल्ले, दिल्ली और दिल्ली के बाद अगर मुंबई की बात ना हो तो भाई ऐसा कैसे हो सकता है। मुंबई के वड़ा पाव तक यहाँ की संस्कृति की तरह यहाँ के स्वाद में भी एक जादुई अपनापन है ना। तो देर किस बात की, जिंदगी की बहुत छोटी है दोस्तों, जिंदगी हमारी बहुत छोटी है, यह दुनिया बहुत बड़ी है। अपना बैग पैक कीजिए और निकल पड़िए इस खूबसूरत देश को अपनी आंखों से देखने के लिए। चलते चलते मुझे यानी आर्ष वीर दमन को आपसे और भी बातें करनी है ना। तो आज हम जो आपको टॉप डेस्टिनेशन की बात करें तो वो है बैक वाटर्स। जी हाँ, बैक वाटर्स।

वाटर्स। और बैक वाटर का यात्रा अगर हम करना चाहते हैं भारत में, तो सबसे शानदार अनुभव केरल में मिलता है। यहाँ के ताड़ के पेड़ से घिरी शांत नहरें, हाउस बोट मौजूद हैं। बैक वाटर घूमने के लिए सबसे प्रसिद्ध जगह है एलिपी, जी हाँ, जिसे पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है। और ये केरल के ही जो है ना बैक वाटर्स, यहाँ का मुख्य केंद्र है, जहाँ हाउस बोट शिकारा की सवारी सबसे प्रसिद्ध है। और त्रिवेंथापुरम के पास स्थित यह बैक वाटर अपने शांत और काव्यात्मक सुंदरता के लिए जाना जाता है, जहां नदी, झील, समुद्र एक साथ मिलते हैं। और अगर हम समय की बात करें कि कौन सा समय सबसे बेस्ट है यहाँ घूमने के लिए, तो वो है सितंबर से मार्च के बीच का ये महीना जो होता है ना, सबसे खूबसूरत होता है, और जहाँ मौसम सुहावना भी होता है ना।

0: Hey, did you know? Over the past 12 years, under the visionary leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi, India's defense sector has witnessed a remarkable transformation. From boosting indigenous manufacturing to strengthening defense exports, India is shaping the future of defense with confidence.
1: You are right. In the defense sector, the Ministry of Defense has been creating the right environment for Indian companies to design, develop and build world-class technologies right here at home.
0: Exactly. And one name that's leading this transformation is HAL, Hindustan Aeronautics Limited. From indigenous fighter aircraft and combat helicopters to trainers, transport aircraft and advanced aerospace system, HAL is helping build the future of India's defense.
1: HAL is bringing together private industry and thousands of MSMEs to create a powerful defense manufacturing ecosystem.
0: So, every innovation is taking India one step closer to an Atmanirbhar Bharat. Powered by Indian talent, Indian technology and Indian determination.
2: 12 saal vishwas ke, vikas ke, jan kalyan ke.
3: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
4: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
3: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
4: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
5: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
6: उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkounivy.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।
7: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज रेनबो डेस्टिनेशन में कि आप कहाँ कहाँ जो भारत के अलग अलग जगहें हैं वहाँ घूम सकते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं एलईपी की, जी हाँ, बैक वाटर्स की। तो बैक वाटर्स जहाँ पर हाउस बोट हैं, ये तैरते हुए घर जैसे होते हैं जिनमें कमरे, रसोई, बालकनी होती है। किराए में आमतौर पर नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना शामिल होता है। अगर आप कुछ घंटों के लिए बैकवाटर्स घूमना चाहते हैं तो छोटी लकड़ी की नाव किफायती और बेहतरीन होती है। तंग और छिपी हुई नहरों को खुद से एक्सप्लोर करने के लिए सबसे बेहतरीन विकल्प है। और अगर बजट और खर्चे की बात करें तो शिकारे की सवारी लगभग 2000 से 4000 के बीच, जो आपकी यात्रा के समय पर निर्भर भी करता है, 8000 से 15000 प्रतिदिन तक। और केरल के बैकवाटर्स की अद्भुत सुंदरता और शांत वातावरण का अनुभव लेने के लिए इससे अच्छा विकल्प तो हो ही नहीं सकता। और अगर आपको ज्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप केरल पर्यटन की आधिकारिक जो वेबसाइट है उससे अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और आसपास और भी जगह हैं, जैसे कि मुनार है, अपनी हरी भरी चाय के बागानों और मनमोहक घाटियों के लिए मशहूर है, वहां पर भी आप घूम सकते हैं, है ना। तो घूमने के विकल्प तो है ही पूरे भारत में। तो अगर आप साउथ इंडिया में जाना चाहते हैं तो मुनार और एलपी इज द बेस्ट। आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर चल रहा है रेनबो डेस्टिनेशन।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
0: और दोस्तों, आपको अब बता दें

कि हर साल 21 जून को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए यह दिन निर्धारित किया गया है। और आपको बता दें कि आज हम जिस योग आसन की बात कर रहे हैं वो है मकर आसन। संस्कृत के दो शब्द जो हैं उनसे मिलकर ये बना है, मकर यानी मगरमच्छ और आसन मुद्रा से मिलकर बना है। यह पेट के बल लेटकर किया जाने वाला एक सरल विश्रामकारी आसन है जो शरीर, रीढ़ की हड्डी और मानसिक जो तनाव है उसको दूर करने के लिए ये जो है किया जाता है। मकर आसन करने की विधि जो है वो है, शुरुआती मुद्रा जो है वो है योग मैट पर पेट के बल आराम से लेट जाएं। पैरों की अगर स्थिति की बात करें तो दोनों पैरों को सीधा रखें, एड़ियों को पास मिलाएं, पंजों को बाहर की ओर मोड़ें और अपनी दोनों कोहनियों को मोड़कर हाथ को छाती के सामने लाएं। दोनों हाथों की हथेलियों को एक दूसरे पर टिकाकर ठोड़ी यानी कि चिन को हथेलियों पर रख दें और आंखें बंद कर लें। अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें और गहरी और धीमी गति से सांस लें और छोड़ें। इस अवस्था में कम से कम आपको 3 से 5 मिनट तक रहना है। और मकर आसन के अगर फायदे की बात करें, उनके बेनिफिट्स की बात करें, तो यह मानसिक शांति प्रदान करता है, चिंता व तनाव को कम करने में मदद करता है और पीठ और रीढ़ के लिए भी बहुत फायदेमंद है। कमर दर्द, स्लिप डिस्क, रीढ़ की हड्डी की जकड़न को दूर करने के लिए बहुत लाभकारी है। पेट के बल लेटने से पाचन अंगों का हल्का दबाव पड़ता है जिससे पचन और कब्ज में जो होती है राहत मिलती है। यह फेफड़ों को पूरा खुलने में मदद करता है जो अस्थमा के रोगी के लिए बहुत फायदेमंद है। और सावधानी, अगर हम बात करें सावधानी की, तो आपको कुछ प्रिकॉशंस भी लेनी है। यदि आप गर्भवती हैं और फ्रोजन शोल्डर से पीड़ित हैं तो इस आसन को करने से बचें। इसे किसी भारी शरीर कसरत के बाद शरीर को आराम देने के लिए किया जाता है। तो ये तो थी आज जो हम आपको बात की वो है मकर आसन के बारे में। और 21 जून को तो हम सेलिब्रेट कर ही रहे हैं ना, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो आप भी हमारे साथ जुड़िएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में 21 जून को। आकाशवाणी FM रेनबो 102.6 पर आपके साथ हूं मैं, आपका दोस्त वीर दमन।

दोस्तों अब अपने दोस्त वीर दमन को दीजिए इजाजत इस प्रोग्राम से, और आपसे मुलाकात होगी अल्फा जैन में शाम 4 बजे 4:05 पर। और आपको बता दें कि कुछ ही देर में आप सुनेंगे स्पॉन्सर प्रोग्राम।

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे आपके सबके चहेते कार्यक्रम उमंग में। मैं हूँ विमलेश, नमस्कार।
0: अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है राधे नगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी ने। लिखते हैं,
2: अगर आप एक खुशहाल जीवन जीना चाहते हो तो अपने आप को अपने उद्देश्य से बांधो, ना कि लोगों से। हुनर होगा तो दुनिया खुद कदर करेगी। भीड़ में एड़ियां उठाने से किरदार ऊंचे नहीं हो जाते।
0: आपके सुंदर विचार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कारिया जी। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का। लिखा है, नमस्कार, ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत समयानुकूल विषय गर्मी के मौसम में अपनी देखभाल कैसे करें पर लगातार 3 दिनों तक जीवन उपयोगी मालूमात प्रदान की गई। 12 मई को भीषण गर्मी के मौसम में कैसे कपड़े पहनने चाहिए, 12 बजे से 4 बजे तक धूप में निकलने से बचना चाहिए और थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना आवश्यक है। आगे लिखते हैं,
2: 13 मई को गर्मी में हमारा खान पान कैसे होना चाहिए और 14 मई को लू लगने पर क्या प्राथमिक उपचार करने चाहिए, इस बात की जानकारी बहुत ही सरल और सहज ढंग से समझाई गई। हमने व्यक्तिगत रूप से इन बातों को अमल करना शुरू कर दिया है। उमंग की पूरी टीम को हम हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने हमें जागरूक कर दिया।
0: आगे आपने लिखा है, कारगिल के वीर योद्धाओं के अदम्य साहस की शौर्य गाथा को बयान करने वाले ऑपरेशन विजय पर 13 मई को विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई। इस प्रस्तुति के लिए उमंग की संपूर्ण टीम बधाई की पात्र है। धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद उमंग टीम की ओर से इस विस्तृत विश्लेषण व प्रोत्साहन के लिए।
0: ग्राम राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से मानिक राम प्रजापति, श्रीमती सविता प्रजापति, घनश्याम राम, हरिशंकर, रत्नेश कुमार और प्रशांत प्रजापति।
2: ग्राम कालापारा से रामचंद्र गुप्ता, पांडे राम राजवाड़े लिखते हैं,
0: आज के जमाने में यदि हम सब मिलजुल कर रहें और भाईचारा बनाए रखें तो यही जिंदगी जीने का असली मजा है।
2: जी,
0: आपका कार्यक्रम हम हर रोज सुनते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है।
2: जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फाजिलका से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदन लाल वर्मा।
0: ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाकसे जी लिखते हैं, प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आगे लिखते हैं,
2: हमें आपका उमंग कार्यक्रम बेहद पसंद है। हमें दिनांक 21 मई 2026 दिन गुरुवार का उमंग कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। इस कार्यक्रम में कहानी पेड़ हमारे दोस्त बहुत ही प्रेरणादायक लगी। धन्यवाद।
0: स्वागत है आप सबका श्रोताओं एक बार फिर से ये भी जानिए श्रृंखला की अगली कड़ी में।
2: पिछले दिनों हमने चर्चा की लोकटक, मानसरोवर और चिल्का झीलों की, उनके बारे में जाना। तो अजीत जी, आज हम किस झील की चर्चा करने जा रहे हैं?
0: विमलेश जी, देखिए, यदि सारी झीलों की चर्चा हो जाए और कश्मीर की डल झील की चर्चा न हो तो चर्चा अधूरी सी लगेगी।
2: बिल्कुल।
0: तो आइए बढ़ाते हैं आज की चर्चा को। जी, तो आपको बता दें कि डल झील भारत की सबसे खूबसूरत झीलों में से एक है। ये श्रीनगर में स्थित है। आपको पता है इसे कश्मीर का गहना या ज्वेल ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। जहां तक इसके पानी की बात है, यहाँ पानी झेलम नदी और आसपास के पहाड़ी झरनों से आता है। तो श्रोताओं, अब बात करते हैं इसके नाम पर। नाम है डल झील। इसके बारे में मान्यता है कि डल शब्द कश्मीरी भाषा के दल शब्द से संभवतः आया है, जिसका अर्थ झील ही होता है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि प्राचीन काल में जल से भरे विस्तृत क्षेत्र को दल कहा जाता था। बाद में यही नाम इस झील के लिए भी प्रयुक्त होने लगा। श्रोताओ, डल का मतलब ही झील होता है, इसलिए कश्मीर में इसको सिर्फ डल कहते हैं, डल झील नहीं। ये झील दुनिया भर के पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। यहाँ के हाउस बोट बहुत ही लोकप्रिय है, जिन्हें शिकारा भी कहते हैं। शिकारा एक स्थानीय शब्द है जिसका अर्थ होता है नाव। शाम को धीरे धीरे जब सूरज ढलता है तो प्रकृति का नजारा देखने लायक होता है। शिकारों पर गीत, संगीत और चाय कहवे का मजा बेजोड़ है। शिकारे पर बजाए जाने वाले पारंपरिक मुख्य कश्मीरी वाद्य यंत्र हैं संतूर, रबाब, सारंगी, सहतार और साज ए कश्मीर।

0: ये वाद्य यंत्र और पर्वतीय गायन शिकारे पर समा बांध देता है। श्रोताओं, एक और खास बात आपको बता दें कि डल झील में भी तैरते हुए छोटे छोटे बगीचे नुमा द्वीप हैं। इन्हें फ्लोटिंग गार्डन या स्थानीय भाषा में राद कहते हैं। ये ज्यादा भारी नहीं होते, इसलिए नावों द्वारा यहाँ से वहाँ ले जाए जा सकते हैं। डल झील में जो तैरते हुए बगीचे नुमा द्वीप हैं, वे मानव निर्मित हैं, जो झील की खरपतवार और मिट्टी से बनाए जाते हैं। इन नावों पर सब्जियां, फूल और खासकर कमल के फूल उगाए जाते हैं। एक बात और श्रोताओं, इस झील में फ्लोटिंग मार्केट यानी तैरते हुए बाजार भी हैं। यहाँ अभी भी कहीं कहीं वस्तु विनिमय प्रणाली देखने को मिलती है, यानी ये सब्जी लीजिए और बदले में वो सब्जी या फल दे दीजिए। श्रोताओं, ये जानना भी बड़ा मजेदार है कि आखिर ये झील बनी कैसे। तो इसका मुख्य कारण है हिमालयी भूगर्भीय परिवर्तन। बहुत पहले हिमालय क्षेत्र में धरती की परतों के उठाव और धंसाव की प्रक्रिया से वहां कहीं पर्वत बने तो कहीं गहरे गड्ढे, ग्लेशियरों की बर्फ पिघली और उनका पानी नदी के रूप में घाटों और गड्ढों में जमा हुआ। डल झील इसी का परिणाम है। श्रोताओं, डल झील का पानी मीठा है, यहाँ भी प्रवासी पक्षी बहुत बड़ी संख्या में आते हैं, लेकिन अब ये झील प्रदूषण और सिल्टेशन यानी मिट्टी भराव की समस्या से जूझ रही है। इसके समाधान के लिए कई कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। श्रोताओं, बात यहीं पर खत्म नहीं होती। झील के किनारे शानदार शालीमार और निषाद गार्डन्स की सुंदरता देखते ही बनती है। सचमुच डल झील न सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य से समृद्ध है, बल्कि ये झील कश्मीरी जीवन शैली, संस्कृति और पर्यटन का भी प्रतीक है।
1: तो श्रोताओं, ये थी आज की हमारी जानकारी सुंदर प्यारी डल झील के बारे में।
0: अब सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से आज का प्रश्न है, डल का अर्थ कश्मीरी भाषा में क्या होता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: डल का अर्थ कश्मीरी भाषा में क्या होता है?
0: आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। और हाँ,
1: हमारे IVRS का नंबर भी नोट कर लीजिए, 8800-440-559। आप हमें यानी CIT NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों और कार्यक्रमों की अद्यतन जानकारी मिलती रहेगी।
0: और अब सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है गुलीवर की विचित्र यात्राएं।
1: इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक जोनाथन स्विफ्ट द्वारा रचित कथा का रेडियो रूपांतरण किया गया है, जो रहस्यों और रोमांच से भरपूर है। स्विफ्ट द्वारा रचित कथा का रेडियो रूपांतरण
2: नौकरी करते हुए मैंने कई लंबी लंबी यात्राएं की। एक बार
1: इस कार्यक्रम में बिन्नी नाम की एक बच्ची के सपने और महत्वाकांक्षा के बारे में बताया गया है कि वो बड़ी होकर क्या करना चाहती है, कि वो बड़ी होकर क्या करना चाहती है। इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित किया गया है कि वे भी अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करें।
2: तो श्रोता, अभी आप सुन रहे थे, बाद में पता चला कि ये लिलिपुट द्वीप है। आज का हमारा, जब मेरी नींद खुली तो मैंने अपने आप को
1: उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: आश्चर्य में पड़ा सोच ही रहा था,
1: थोड़ा सा फंबल था,
2: कि कोई चीज
1: तो अब आज का उमंग कार्यक्रम
2: मेरे पैरों पर रेंगती रेंगती मेरी छाती पर आकर,
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: कुछ देर बाद उसी प्रकार के कई प्राणी मेरे शरीर पर चढ़ाए। मैं जोर से चिल्ला उठा, कौन हो तुम? मेरा चिल्लाना था कि वो लोग लुढ़कते पुढ़कते और चीखते चिल्लाते भागे। इसके बाद मैंने उठने का प्रयत्न किया तो कुछ धागे टूट गए। ये देख उन लोगों ने सुई जैसे पतले पतले तीरों की वर्षा शुरू कर दी। एक तीर मेरी बाईं आंख पर लगा। ये देख सिपाहियों ने 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर मुझे सौंप दिया। 5 को तो मैंने अपने कोट की जेब में रख लिया और 1 को उंगलियों में पकड़कर मुंह की ओर ले जाने लगा। वो मारे भय के बुरी तरह चीखने लगा। मैंने उन सबको जमीन पर छोड़ दिया। छुटकारा पाते ही वो गिर

पढ़ते पढ़ते वहां से भागे। इस बात का और लोगों पर अच्छा असर पड़ा। बादशाह ने जब यह सुना तो उसने भी मेरी प्रशंसा की। राज दरबार के कुछ व्यक्ति मेरे भोजन पानी के खर्च को देखकर सोचने लगे कि इससे देश में अकाल पड़ जाएगा। वे विषैले तीरों से मेरी हत्या कर देना चाहते थे, परंतु सौभाग्य से बादशाह उनकी बातों में नहीं आया। उसने मेरे भोजन पानी का सारा उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया और 6 विद्वानों को मुझे उस देश की भाषा सिखाने के लिए नियुक्त कर दिया। कुछ दिनों में मैंने उन लोगों की भाषा सीख ली। मेरे स्वभाव और व्यवहार से वे लोग बहुत खुश थे। अब वे निडर होकर मेरे पास आते, कभी वे मेरे सिर पर उछलते कूदते और कभी नाचने लगते। बच्चे तो मेरे बालों में आंख मिचौनी खेलते। इस तरह मैं सबका खिलौना बना हुआ था। एक दिन मैंने बादशाह से अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना की। उसने मुझे इन शर्तों पर मुक्त करना स्वीकार किया कि मैं बादशाह की आज्ञा के बिना कहीं ना जाऊं और किसी देश से युद्ध छिड़ जाने पर मैं लिलिपुट वासियों की सहायता करूं। कुछ दिन बाद मुझे ज्ञात हुआ कि पड़ोसी देश ब्लेफुस्कू के बादशाह ने एक शक्तिशाली जहाजी बेड़ा तैयार कर लिया है। वो लिलिपुट पर चढ़ाई करने का अवसर देख रहा है। शर्त के अनुसार मैंने उन लोगों की सहायता करने की एक योजना बनाई। कुछ रस्सियां और कांटे लेकर मैं ब्लेफुस्कू की खाड़ी की ओर चल दिया। ये खाड़ी मेरे लिए विशेष गहरी न थी, पर उन लोगों के लिए तो ये महासागर से कम न थी। मैंने खाड़ी में घुसकर वहां खड़े सब जहाजों को कांटों में फंसा लिया और उन्हें खींचता खींचता लिलिपुट की ओर चल दिया। ब्लेफुस्कू के सैनिक मेरे ऊपर तीर बरसाने लगे, पर चश्मे और चमड़े के कोट के कारण उनके तीर मेरा कुछ भी ना बिगाड़ सके। ब्लेफुस्कू के जहाजों को खींचकर जब मैं लिलिपुट की खाड़ी में ले गया तो वहां के बादशाह और लोगों ने प्रसन्नता से उछल उछल कर मेरा स्वागत किया। बादशाह ने मुझे अपने देश की सबसे बड़ी उपाधि से सम्मानित किया। एक दिन मैं लिलिपुट खाड़ी के किनारे घूमता घूमता दूर जा निकला। वहां मुझे पानी में एक बड़ा तख्ता तैरता दिखाई दिया। ध्यान से देखने पर ज्ञात हुआ कि वो एक उल्टी हुई नाव थी। उसे देखकर मैं खुशी से नाच उठा। ये नाव नहीं, मेरी आशाओं का दीपक थी। कुछ दिन बाद मैंने बादशाह से अपने देश जाने की आज्ञा मांगी। उन्होंने मुझे बड़े प्रेम से विदा किया और बहुत सी भोजन सामग्री मेरी नाव पर लदवा दी। सौभाग्य से रास्ते में मुझे एक जहाज दिखाई दिया। नाविकों ने मुझे जहाज पर चढ़ा लिया। ये देख मेरी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा कि जहाज मेरे ही देश का था। लिलिपुट से लौटकर 2 महीने तक मैं घर पर ही रहा। उसके बाद मुझे फिर जहाज पर काम मिल गया। कुछ दिन बाद

हमारा जहाज हिंदुस्तान के लिए रवाना हुआ। अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर चलते चलते हमारा जहाज तूफान में फंसकर रास्ता भूल गया। और भटकते भटकते एक टापू के पास पहुंचा। नाविक तो जहाज की देखभाल में लग गए और मैं अपने कुछ साथियों के साथ नाव लेकर पानी की तलाश में टापू की ओर चल दिया। मुझे पानी कहीं न मिला। पेड़ की ठंडी छाया देख मैं वहीं लेट गया। कुछ देर बाद जब मैं नाव की ओर लौटा तो क्या देखता हूं कि मेरे साथी नाव को तेजी से जहाज की ओर लिए जा रहे हैं। मैं उन्हें आवाज देने ही वाला था कि मेरी नजर एक विशालकाय आदमी पर पड़ी। आदमी क्या, वो तो पूरा राक्षस था। समुद्र का पानी उसके घुटनों तक ही आ रहा था। उसे देख अपनी जान बचाने के लिए मैं एक खेत में जा छिपा। कहने को तो ये जौ का खेत था, पर जौ के पौधे हमारे देश के पेड़ों से कम ऊंचे न थे। पेड़ तो पहाड़ की चोटी की समता करते थे। जौ के पौधों की आड़ में छिपे छिपे मैंने देखा कि कुछ आदमी उसी खेत की ओर आ रहे हैं। उन्होंने जौ काटने शुरू किए तो एक की नजर मुझ पर पड़ी। उसने खिलौने की तरह मुझे उठाकर हथेली पर रख लिया। मुझे लगा कि मैं एक ऊंचे पेड़ की टहनी पर चिड़िया की तरह बैठा हूं, पर क्या मैं चिड़िया की तरह आजाद था? उस लंबे चौड़े किसान ने मुझे उलट पलट कर देखना शुरू किया तो मैं डर के मारे चीखने लगा। ये देख उसने मुझे धीरे से जमीन पर रख दिया। मेरी जान में जान आई। मैंने चिल्ला चिल्ला कर उसे अपने बारे में बताना चाहा, पर वो समझे तब ना। उसने मुझे बड़ी सावधानी से उठाकर अपनी चौड़ी हथेली पर रख लिया और अपने घर ले आया। घर लाकर जैसे ही किसान ने अपनी पत्नी को दिखाने के लिए हथेली उसकी ओर बढ़ाई तो मुझे देखकर वो स्त्री इस तरह डर गई जैसे कोई सांप बिच्छू को देखकर डर जाए। ये देख किसान को बड़ा मजा आया और वो खिलखिलाकर हंस पड़ा। मुझे लगा कि आंधी चल रही है और बादल गरज रहे हैं। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर चारों ओर देखने लगा। वहां सभी प्राणी और सभी चीजें बड़े बड़े आकार की थीं। नांद जैसे प्याले, बड़े बड़े थालों जैसी रोटियां, शेर शेरनी जैसे कुत्ते बिल्लियां, छोटे से छोटा बच्चा भी मुझसे चौगुना लंबा चौड़ा। इन सबके बीच में मैं अपने आप को मक्खी मच्छर जैसा अनुभव कर रहा था। लिलिपुट के लोग मुझे देखकर जितना हैरान हुए होंगे, उससे कहीं अधिक हैरानी मुझे इन लोगों को देखकर हुई। इन लोगों में रहते रहते मेरा भय मिट गया। इनका आकार ही डरावना था, वैसे आदमी भले थे। मैंने इस देश की भाषा भी सीख ली। इससे मुझे बहुत सुविधा हो गई। कभी कभी मैं मेज पर खड़े होकर किसान और उसके परिवार वालों को

तरह तरह के खेल दिखाता। मेरा नाच और तलवार चलाना उन्हें बहुत पसंद आता। इससे उनका अच्छा खासा मनोरंजन हो जाता। ये देखकर किसान के मित्र ने उसे सलाह दी कि वो राजधानी में लगने वाले मेले में टिकट लगाकर लोगों को मेरा खेल दिखाए। अब किसान ने मुझे एक लकड़ी के डिब्बे में बंद किया और उसे हाथ में लटकाकर मेले में ले आया। राजधानी के लोग मेरा खेल देखने के लिए टूट पड़े। मेरे खेल से अधिक वे मुझे देखना चाहते थे। उनके लिए तो मैं जीता जागता खिलौना था। यहां मुझे दिन में 10-10 बार खेल दिखाने पड़ते थे। इस तरह काफी पैसा कमाने के बाद उस किसान ने 1000 सोने के सिक्कों के बदले मुझे उस देश की महारानी को बेच दिया। महारानी ने मेरे लिए एक पिंजरा बनवाया। पिंजरा क्या, ये तो एक कमरा था। खाना खाते समय महारानी पिंजरे को अपनी मेज पर रखकर मुझे भी खाना खिलाती। उसने मेरे लिए विशेष रूप से छोटे छोटे बर्तन भी तैयार करवाए। एक बार राजा और रानी अपने नौकर चाकरों के साथ अपने राज्य का दौरा करने निकले। उन्होंने मुझे भी साथ ले लिया। चलते चलते हम ऐसे नगर में पहुंचे जो समुद्र के समीप ही था। समुद्र को देखकर मुझे अपने देश की याद आ गई और मैं उदास हो गया।

0: ये देखकर नौकर पिंजरा उठाकर समुद्र के किनारे ले गया। पिंजरे को एक चट्टान पर रखकर वो समुद्र की रेत पर लेट गया। समुद्र की ओर ललचाई नजरों से देखते देखते पता नहीं मुझे कब नींद आ गई। खड़खड़ की आवाज सुनकर जब मेरी आंख खुली तो भय और आश्चर्य से मेरा दिल धड़कने लगा। मेरा पिंजरा हवा में उड़ रहा था। मैं अभी सोच में पड़ा ही हुआ था कि अचानक पिंजरा इतनी तेजी से नीचे गिरा कि मेरी आंखें भय से बंद हो गईं। छपाक! पिंजरा एक बार तो पानी में काफी नीचे तक चला गया, पर फिर केवल थोड़ा सा ही डूबकर नाव की तरह तैरने लगा। खुला समुद्र, लहरों के थपेड़े, तीर की तरह चुभती हुई ठंडी हवा, खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं। मेरे दुर्भाग्य का कहां अंत होगा? इससे तो मैं महारानी की कैद में ही ठीक था, मैं सोचने लगा। मैंने अपने आप को भाग्य के सहारे छोड़ दिया। उस असहाय स्थिति में पड़े पड़े मुझे काफी देर हो गई थी कि मुझे लगा जैसे कोई पिंजरे को तेजी से एक ओर खींच रहा हो। पिंजरे की खिड़की से हाथ निकालकर मैं जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा। जब जवाब में मैंने अपने देश की भाषा सुनी तो मेरा रोम रोम खिल उठा।
1: और अब सुनते हैं आज का आखिरी कार्यक्रम। शीर्षक

0: बिन्नी का सपना।
1: इस कार्यक्रम में बिन्नी नाम की एक बच्ची के सपने और महत्वाकांक्षा के बारे में बताया गया है कि वो बड़ी होकर क्या करना चाहती है। इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित किया गया है कि वे भी अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करें।
0: बिन्नी का सपना।
2: अरे तुम्हें क्या हुआ?
3: बिन्नी, मुझे बुखार हुआ है। मेरा तापमान 2 डिग्री से ज्यादा बढ़ गया है।
2: ओह, किसने की तुम्हारी ये हालत?
3: इन गैसों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है।

तापमान हम बढ़ाते हैं, मौसम में गड़बड़ी फैलाते हैं, पर्वतों की बर्फ को पिघलाकर तटीय क्षेत्रों को डुबोते हैं।

0: नाम है हमारा CO2 और CH4, ग्रीन हाउस गैस हम कहलाते हैं।
1: SO2 है मेरा नाम, तेजाब की बारिश करना है मेरा काम, सांस लेना मुश्किल कर देता हूँ, जीवन में उलझन भर देता हूँ।
2: NO2 है मेरा नाम, सेहत बिगाड़ना मेरा काम, सर दर्द खांसी बढ़ाता हूँ, बहुत खतरनाक माना जाता हूँ।
0: CFC है मेरा नाम, ओजोन परत को हानि पहुंचाना मेरा काम, जिससे यूवी किरणें आ जाती हैं, त्वचा कैंसर का खतरा बढ़ाती है।
3: तुम परेशान मत हो, मैं हूँ ना, मैं अभी इन्हें मजा चखाती हूँ।

0: ये सपना था, पर हमें सचमुच अपनी पृथ्वी को बचाना है।
1: तो श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बिन्नी का सपना, और अब इसी कार्यक्रम के साथ आज का हमारा उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: TWSM। पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
1: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

हाँ जी प्यार लिसनर्स, जैसो मैंने जैसी रियल टाइम डे कोई ट्रैफिक लगा जानकारी और यदि कोई ऐसे नॉर्थ बाउंड को ले तो इट नॉर्थ में जाला का ट्रैफिक डायरेक्शन से दैट इज नॉर्थ ऑफ कोहिमा एंड टुवर्ड्स हाई स्कूल एरिया और साउथ बाउंड तो साउथ ऑफ कोहिमा फिर आया लगा ट्रैफिक डायरेक्शन हेड टुवर्ड्स बीओसी मोंकोला टू पीएचक्यू जंक्शन मजद ऐसी को ले नॉर्थ बाउंड ला डायरेक्शन दिए और इंटरनेशनल साउथ बाउंड ला ट्विटर डायरेक्शन दिए ट्रैफिक तो लाइट ही ऐसे यानी ट्रैफिक कम दे ऐसे PHQ junction or major junction majodiole northbound direction de traffic to moderate ase or southbound direction de traffic to heavy dikhai ase agudusra rasta logoli do paramedical to T model to IG no leba ladies mile road edu rasta kan lobo paribo TCB to rasa point majodiole northbound or southbound to that direction de be traffic to moderate ase agola grasan lobo paribo TCB to rasa point no leba Park scudding to NHK to Census Point, Noliba Pulpari to Kochozi Crown to Raza Point. Raza Point to Census Point Majodiole, northbound direction due traffic to heavy assay, Aro southbound direction due traffic to moderate assay. Agodusra Rasa Low Parabo, Census Point to NHK. High School Junction Aro Census Point Majodiole, northbound direction due traffic to light assay, Holibe southbound direction due traffic to heavy assay. Agudusra Rastan Low Parabo, Billy Graham Road to DBS, Noliba High School Junction to T Model Road. NHK Junction or Census Point Majodiole, northbound or southbound, to that direction debi traffic to light DSA. It was a real time di kaima traffic like a junkery apnyanite honile, agua idea agibara in a program and tulase Rural Connect.

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: Dear listeners, today's talk highlights how collaborative conservation efforts can benefit both nature and communities. The Forest and Biodiversity Management in the Himalaya Nagaland project is helping build a future where environmental protection and sustainable livelihoods go hand in hand. Resource persons for this program were from the FPMP Project Management Unit, Dr. Dintoli A. Koho, GIS expert, Bol Zaboba, livelihood expert, Zolokumzak Bowen, biodiversity management expert. Join us next week for the 54th episode of Green Guardians. This program was narrated by Imli Sanla, assisted in production by Yanga Jungla, and produced by Ella Gayena.
1: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
2: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
1: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: FM Dragoban 103 MHz News, Music and Entertainment FM 103 MHz
2: Sup Sandhya Salam or Namaste Hunitaga Sabilak Apnarkan Sabke Swagat Kurese Akishwani FM Tragopan 110 MHz Bra Araji Rati Apnarkan Karune Anidiase Live Phone In Program Hindi Flame Git Program Te Jiha Live Phone In Program Ase Apnarkan Tarika Sabjani Ase Hoilibi Jun Tuhan Ajihe Tune In Kurese Aro Program Te Ahigina Shamil Hobole Monase Aro Phone Number Jankari Noigina Thakise Koile Mane Apnarkan La Jankari Nimite Ako Koidi Ase Phone Number Ase 0370 Jun To Kota Ase Aro Phone Number Ase 2243036 Number Ako Koidi Ase 0370 7022430 36 ito number de call kuribi moi lote batchit kuribi aro moi apnar khan pasand kurala git yate pra khushi bra bajai dia hobo goi gen apnar khan sabke janai dia se moi apnar khan la calls rukhi thakibo itu samoy te horibo hangama 2 film ki git gayase antra mitra aro nakas aziz

0: हेलो,
1: हेलो, गुड इवनिंग मैम
0: गुड इवनिंग।
1: जी। मैं ग्राम गुनोरे, जिला सतारा, महाराष्ट्र से तनुश्री सुर्वे बात कर रही हूँ
0: तनुश्री कैसे हैं?
1: जी। मैम मैं बहुत अच्छी, और आपसे बात की ना तो और भी अच्छी हो गई।
0: बहुत अच्छी बात है। बोलिए, कौन सा गीत सुनना है?
1: आप कैसी हैं
0: मैं बहुत अच्छी हूँ।
1: जी? और फिल्म का नाम है बाजीराव मस्तानी
0: बाजीराव मस्तानी में कौन सा वाला गीत सुनना है आपको? हाँ,
1: जी। मैं गा के सुनाती हूँ, मैं गा के सुनाती हूँ।
0: आयत है आज इबादत, आप तो ही जाने ना दूंगी। अलबेला साजन मोहे रंग दो लाल, पिंगा
1: जी
0: है
1: वही
0: मोहे
1: मोहे
0: रंग
1: रंग
0: दो।
1: दो
0: ओके,
1: डाला जी। जी
0: किसी का नाम लेना है आपको? ओके,
1: पहले तो आप है,
0: थैंक यू।
1: और भगवान सिंह परमार, अमोल भट्टाचार्य, और मेरे पापा को भी डेडिकेट रहेगा।
0: ओके, ठीक है। तनुश्री, आपका गीत सुनिए और एंजॉय कीजिए, ठीक है? ओके,
1: ओके
0: बाय
1: बाय।
0: बाय। শুনি থকা সব বিলাক প্রোগ্রাম টি এবার দুসরা গীত শুনব। শ্রেয়া ঘোষাল আর বিরজু মহারাজ লগা ওয়াস্তে ফিল্ম আছে বাজিরাও মস্তানি, আর এই গীত পছন্দ করেছে মহারাষ্ট্রপ্রা তনুশ্রী।

0: हेलो
1: हेलो नमस्कार
0: नमस्कार, बोलिए आपका शुभ नाम।
1: मैं राकेश बात कर रहा हूँ, शिमला कोटखाई हिमाचल प्रदेश।
0: कैसे हैं?
1: बहुत बढ़िया है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है।
0: बोले कौन सा गीत सुनना है आज?
1: फिल्म का नाम है बरसात।
0: बरसात
1: जी
0: ओके बरसात। बरसात में कौन सा वाला गीत सुनना है आपको?
1: उसमें एक गाना है सोनू निगम और कविता को कृष्णामूर्ति ने गाया, इश्क में एक पल की भी जुदाई।
0: ओके देखता हूँ बरसात।
1: जी
0: ओके अगर मैं है तो है लेकिन नहीं निकल रहा है, देखता हूँ।
1: अच्छा
0: देखता हूँ, थोड़ा रुकिए। बरसात सोनू निगम और किसका आवाज में?
1: कविता कृष्णमूर्ति।
0: कविता कृष्णमूर्ति। बरसात नया वाला है ना क्या?
1: हाँ नया वाला नया वाला नया वाला।
0: कविता का आवाज, गाना का बोल मालूम नहीं है आपको?
1: गाने के बोल है, इश्क में एक पल की थी जुदाई, लगती है एक साल।
0: एक है मुश्किल
1: जी।
0: में 2005 का है ना क्या?
1: हाँ जी, बॉबी देओल वाली।
0: एक 2005 का है और दूसरा वाला है 1997 का है।
1: हाँ 1997 का, उसमें गाने कौन कौन से?
0: हाँ दिल पागल दीवाना है कुमार सानू का आवाज में, एक हसीन लड़की हमको पढ़ाई से क्या, हमको सिर्फ तुमसे, इश्क में एक पल, लास्ट इश्क में एक पल। ओके ठीक है, बहुत समय चला गया।
1: कोई मैं यही गाना बोल रहा था। चलो कोई
0: नहीं। अच्छा किसी का नाम लेना है आपको?
1: जी सबसे पहले तो ये गाना आपको डेडिकेट रहेगा।
0: ओके थैंक यू।
1: पूरन वर्मा जयपुर राजस्थान से, रमेश प्रजापति हैं, भगवान सिंह परमार हैं, अमल बसुमतारे हैं, विमल बसुमतारे हैं, रमेश पात्रे हैं और तनुश्री और तमाम सुनने वाले श्रोता है जो दूसरी कॉलर थी, तो उनको भी गाना डेडिकेट रहेगा। सभी के लिए एक गाना डेडिकेट रहेगा और सभी इस गाने को एंजॉय करेगी और आप भी इस गाने को एंजॉय करेगी
0: और सुनेंगे और एंजॉय भी करेगा। हाँ
1: और शिवालोट भी शायद सुनेंगे, सभी सुनेंगे और तमाम सुनने वाले श्रोता।
0: धन्यवाद, थैंक यू।
1: ओके वेलकम, बाय।
0: होनी ढगा साहब बिल्लाक प्रोग्राम टे बार दूसरा गीत दिए से बरसात। फिल्म के गीत गाय से कुमार सानू, कविता कृष्ण मूर्ति लगा वास्ते और यू गीत होने बोले मन हो गा कल करना पसंद कर शिमला राकेश और तार एफ एम ट्रैकपेनला किसान साथी बिल्क और शुनी थका सब बिल्क और इतने जी जन भी कल कर प्रोग्राम सामिल अपना खान सबके डेडिकेट करो शुनब बरसात फिल्म के गीत।

0: हेलो
1: हेलो मैम, नमस्कार।
0: नमस्कार, बोलिए आपका शुभ नाम।
1: मैं रमेश प्रजापति, ग्राम बाया, तहसील रेठी, जिला सीहोर, एमपी से बोल रहा हूँ।
0: जी बोले।
1: फिल्म का नाम है दो रास्ते। हाँ
0: दो रास्ते, दो रास्ते है कि नहीं देखना पड़ेगा। दो रास्ते है, कौन सा वाला गीत सुनना है आपको?
1: बिंदिया चमकेगी चूड़ी खनकेगी।
0: किसी को डेडिकेट करना है?
1: जी, सबसे पहले तो आपको
0: थैंक यू।
1: भगवान सिंह परमार है, पूरन वर्मा जी है, गजराज लोधी जी है, केसरी सिंह राजपूत है, मांगीलाल चंदेल है, लोकेंद्र वर्मा वर्मा है उज्जैन से, और धर्मवीर है दिल्ली से, आशुतोष जी है, संगीता जी है, पूर्णिमा जी है विजयपुरम से, अविनाश तेली है, पूनम जी है कानपुर से, शिव विदिशा से, अभी राकेश शिमला से, विमल है, अमल है, गोल्डी है, अमर सिंह साहू है, भाई को मुंडा है, रमेश पात्रे जी।
0: और लेना है
1: बस
0: एक्सप्रेस ट्रेन जैसे ही आप बता रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं है, आप सभी लोग सुनिए और एन्जॉय कीजिए। आपने जो फरमाइश किया है मैं बजा रहा हूँ, और
1: जी
0: एन्जॉय
1: जी
0: कीजिए। थैंक यू,
1: थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।
0: गुड नाइट। হুনি থাকা সব বেলা শুনিব দো রাষ্ট্রে ফিল্ম কি গীত গাই আছে লতা মঙ্গেশকর। আর এইটো গীতটো শুনিবলৈ মন হয় কিনা মধ্য প্রদেশ পৰা কল কৰিছে রমেশ প্রজাপতি, আর তারপর তার লাগা কিছুমান সাথীবিলাককে ডেডিকেট কৰি কিনা আছে। তো শুনিব দো রাষ্ট্রে ফিল্ম কি গীত।

0: Hello,
1: हेलो,
0: कौन कौन से कौन
1: देवजीत चक्रवर्ती कुया से,
0: डेमोजी
1: ओहम देवजीत चक्रवर्ती कुया से, ओहम राज्य की हुई जलासरा।
0: ओके कोबी के निकास से अजी
1: गुड इवनिंग शुभ संध्या।
0: बेसी बाला से कोबी की गाना होनी बोले मोना से
1: बाला से, कदमबाला से, और अभी तो प्रोग्राम सुन रहा हूँ आकाशवाणी कोहिमा।
0: हाँ
1: मैं प्रोग्राम सुन रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है और आपके साथ अभी बातचीत हो रहा है ना।
0: हाँ तो
1: और आज तो मैं गाना सुना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है ओ मानुष, ओ मानुष, ओ मानुष।
0: कौन सा फिल्म?
1: दिल ऐसे किसी ने मुझे तोड़ा,
0: नहीं
1: दिल
0: नहीं कौन सा
1: फिल्म
0: फिल्म? फिल्म का नाम और बता दीजिए।
1: का नाम है ओ मानुष,
0: हाँ
1: ओ मानुष। किशन कुमार जी को आवाज में पुराने फिल्म, पुराने
0: ओके उसका स्पेलिंग दे सकता है आप?
1: ओ मानुष।
0: फिल्म का नाम का स्पेलिंग दे सकता है?
1: ओ मानुष, एम ए एन ए एस आई क्यू,
0: हाँ
1: ओ मानुष, ओ मानुष, ओ एम ए एन ए एस आई
0: आ
1: क्यू, ओ मानुष,
0: ए एम
1: ए मानुष, एम ए एन ए
0: मनुष्य।
1: एम ए एन ए एस यू।
0: ओ गॉड शायद
1: मिला मेरा नाम,
0: नहीं नहीं शायद नहीं है ने क्या कभी भी नहीं बजाया है यहाँ पे।
1: और देखिए मैडम आनंद, देखिए आनंद, आनंद
0: आनंद
1: सुने,
0: आनंद तो है।
1: ये देखिए ये मन्ना देवी को आवाज में
0: हाँ आनंद
1: पहली
0: है। जिंदगी कैसे है?
1: कांटी को अच्छा लगता है,
0: हाँ जिंदगी कैसे है माना
1: मैं
0: दे का आवास में ये सुनना
1: दो
0: चाहती हूँ ना।
1: चार मित्रों को नाम एलसमेंट
0: ओके ठीक है ठीक है।
1: और मत अपनी हिंदी वो और हिंदी वो नितिन चक्रवर्ती, अविनाश डांगोरिया, अनुपमा भट्टाचार्य, जासूती डांगोरिया हिंदी वो, पवन भट्टाचार्य, माइकल मुंडा हिंदी वो, और सुहूर्त जिला को होता हूँ आकाशवाणी कोहिमा टीम को रिया से हिंदी से कार्यक्रम टू पकड़ो हिंदी।
0: ओके और लेना है किसी का नाम?
1: आप अच्छा है, आपको नमस्कार, धन्यवाद। आपका प्रेजेंटेशन में कार्यक्रम बहुत अच्छा हो रहा है,
0: ओके थैंक
1: लग रहा
0: यू।
1: है ब्यूटीफुल हो रहा है, बहुत बहुत ब्यूटीफुल हो रहा है, और पूरा भारत में पूरा आकाशवाणी कुमार को जुड़ा हुआ है ना, उसका आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी तो 21 जून आ रहा है, युग दिवस आ रहा है, युग के लिए हमारा एक सूचना दिया, श्रोताओं का उद्देश्य में सारी दिनों को युग किया, और तो भी मेरा ठीक ठाक चलेगा है ना,
0: हाँ जी
1: बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है मैडम,
0: ओके देमोजीत और भी किसी का नाम लेना है आपको?
1: और मेरा साथ तो सुनें मैडम, आप सुनिए, और अभी जो सूत्र आकाशवाणी कुहिमा सुन रहा है सब सुनेंगे। ठीक
0: ओके
1: है,
0: ओके ओके ठीक है देमोजीत आप कॉल किया आपका गीत भी
1: आप
0: मैंने
1: अच्छा रहे, आप अच्छा रहे मैडम, आपका साथ बात करके बहुत अच्छा लगेगा।
0: जी आपका गीत भी मैंने बजाने के लिए रखा हुआ है आप सुनिए और एंजॉय कीजिए। थैंक
1: ओके
0: यू
1: ओके ओके बाय, ओके बाय बाय, थैंक यू सो
0: बाय।
1: मच।
0: हुनी ढगा सब बिला हुनी बो आनंद फिल्म की गीत गाये से माना दी और ओ टू गीत टू हुनी बोले मन हुई किना पसंद कर ডেমজিত চক্রবর্তী আর তার লাগা কিছুমান দোস খান আর আকাশবাণী এফ এম ট্রাইগোপেন যান জনবি টিউন ইন করে কিনা আছে আপনার খান সবকে ডেডিকেট করে কিনা আছে শুনব আর এনজয় করা হব মানা দিলা ভাস্তি ফিল্ম আনন্দ।

0: हेलो
1: जी नमस्ते।
0: नमस्ते, आपका शुभ नाम?
1: प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बटोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
0: बोले, आज कौन सा गीत सुनना है?
1: फिल्म का नाम है मुझसे शादी करोगी और गाने के बोले लाल दुपट्टा उड़ गया रे हवा के झोंके से।
0: मुझसे शादी करोगी?
1: हाँ जी, इसका है ना वो लाल दुपट्टा उड़ गया।
0: मुझसे शादी करोगी? ओके, मुझसे शादी करोगी।
1: कैसे हैं आप?
0: मैं तो बहुत बहुत अच्छी हूँ।
1: हाँ जी, और मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है
0: जी, वहाँ पे कैसे है मौसम?
1: जी। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है और मैं अभी घर पे ही हूँ। अब अपना मैंने एक बगीचा लगा रखा है अपने घर के पास में ही, तो हाँ यहाँ पे मतलब कुछ पौधे लगा रखे हैं, आम के, अमरूद के, वो अनार के, तो उनको अभी नल आए हैं ना, तो उनको
0: अभी तो
1: पानी पिला रहा हूँ।
0: आम का समय है, कभी
1: जी
0: तो
1: बिल्कुल
0: भेजो हम लोग को भी।
1: जी बिल्कुल, भरपूर मात्रा में अभी हमारे यहाँ पे आम मिल रहे हैं। काफी बड़े बड़े पेड़ हैं ना आम के, तो उनपे अभी आम लग रहे हैं, मतलब जो पक के तैयार भी हो चुके हैं, लोग खा रहे हैं बड़ी अच्छी। कोई जूस बना रहा है तो कोई ऐसे खा रहा है, तो कोई चीर करके खा रहा है, तो मतलब सभी स्वादिष्ट फलों को खाया जा रहा है।
0: बहुत अच्छी अच्छी लगा आपको बातें करके, लेकिन बातों बातों
1: जी
0: में समय निकल जा रहा है। तो कौन सा वाला
1: जी
0: गीत बोला था आपने?
1: लाल दुपट्टा उड़ गया रे।
0: लाल दुपट्टा उड़ गया। ओके,
1: हाँ
0: उदित
1: जी
0: और अलका का आवाज में। और
1: हाँ जी
0: किसी का
1: बिल्कुल
0: नाम
1: जी
0: लेना है जल्दी से ले लो, क्योंकि अभी तो सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट है बचा हुआ है।
1: जी बिल्कुल। हमारे दोस्त हैं भगवान सिंह परमार, आशुतोष अभिनव संगीता जी, और महाराष्ट्र से एक तनुश्री करके जो कॉल आते हैं ना,
0: हाँ
1: उनके लिए भी ये डेडिकेट रहेगा, और असम से है भाईपन
0: हाँ
1: मुंडा विमल जी, उन सभी के लिए डेडिकेट। और एक और हमारे दोस्त हैं, मैं उनका नाम भूल गया, रमेश प्रजापति बाया सीहोर वाले।
0: ओके, ठीक है।
1: जी
0: प्रेम सिंह जी, आपका गीत सुनिए और एंजॉय कीजिए, और कॉल करने के लिए शुक्रिया।
1: जी थैंक यू सो मच।
0: वेलकम। होने ठगा सब बेला खुनी बो मुझसे शादी करोगी फिल्म की गीत गाए से उदित नारायण और अलका याग्निक और इटू गेटू आमी खान लोटे कॉल कुरी गिना पसंद कुरी से उज्जैन ब्र प्रेम सिंह सिसोदिया आरो तार ब्र किसुमान दोस्त खान के डेडिकेट कुरी गिना से इटू गीत लोटे हैं लाइव फोन इन प्रोग्राम सेस कुरी दिया होबो। हुनी थका सब बेला कि त्यार प्रा लपसते नागमीस्ट खबर दिया हुनी बो आरो आमी खान को लोक कुरा होबो 9:30 मिनट मोई लोई किना हेबो आरजेस चॉइस हिंदी फिल्मी गीत प्रोग्राम।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: FM Dragoban 103 MHz News, music and entertainment FM 103 MHz

0: मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारतीय युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र उड़ीसा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने चिन्हित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया, इसके कार्यान्वयन के लिए एक नियामक निकाय गठित करने को कहा। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देने तथा तैनात करने का आरोप लगाते हुए उसकी संयुक्त राष्ट्र में कड़ी आलोचना की। लेबनान पर इसराइल के हमले में 21 लोगों की मौत के बाद अमरीका और ईरान के बीच शांति वार्ता का नया दौर स्थगित, बाद में इसराइल और हिजबुल्ला युद्ध विराम पर सहमत हुए। और चीन में मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अश्मिता चालिहा महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में अवसर उन्हीं देशों के होंगे जो कुशल प्रतिभाओं का पोषण करेंगे, नवाचार को बढ़ावा देंगे और गुणवत्ता के उच्चतम मानकों को बनाए रखेंगे। श्री मोदी ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके। और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत के युवाओं की आकांक्षाएं, कौशल और क्षमता ही विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करती हैं।
1: भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े। जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले।
0: इस अवसर पर श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं।

0: 2014 के पहले ऐसी स्थिति थी 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 0.08% एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता था, लेकिन आपके कार्यकाल में 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 1.11% एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉकर टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। कोयला गैसीकरण ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने, आयातित महत्वपूर्ण कच्चे माल पर निर्भरता कम करने और घरेलू कोयला संसाधनों में मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने की भारत की रणनीति का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत का रक्षा उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। महाराष्ट्र के नागपुर में एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने ये बात कही।
2: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन मात्र 46,000 करोड़ था, लेकिन आज भारत फाइनेंशियल ईयर यानी 2025-26 का डाटा देखें तो वह अब बढ़कर रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो चुका है। इसके अलावा 2014 के समय भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट था वह अप्रॉक्सिमेटली 1,000 करोड़ था। इस समय हम अप्रॉक्सिमेटली 40,000 करोड़ रुपए का हम आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यह केवल आंकड़ों की वृद्धि नहीं है बल्कि आप सबके सामर्थ्य की वृद्धि है।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूर दराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि ये बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है।
3: As our foreign policy, हमारी विदेश नीति भारत को एक विश्व बंधु के रूप में स्थापित करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय पासपोर्ट को सम्मान और विश्वास के साथ देखा जाता है। हमारी जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना है कि इस दस्तावेज को प्राप्त करने की प्रक्रिया एक अधिकार का मामला बने, न कि एक संघर्ष का।
4: Remains a matter of right, not as a struggle.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास, विकास और जन कल्याण के प्रसारित कर रहा है। आज बात पूर्वोत्तर के बदलाव के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
5: नए भारत में राष्ट्र निर्माण की बात हो और पूर्वोत्तर क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाए, यह संभव नहीं है। एक समय था जब पूर्वोत्तर को हिंसा, नाकाबंदी और उपेक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस तस्वीर को बदल दिया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने स्वयं 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। इस दौरान दूर दराज और पहाड़ी इलाकों की देश के बाकी हिस्सों से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिला है और स्थानीय लोगों के लिए आय के नए अवसर पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 47,270 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले 12 वर्षों में 8 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। वर्ष 2014 में पूर्वोत्तर राज्यों में 9 हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 17 हो गई है। उड़ान योजना के तहत 90 हवाई मार्गों तथा 12 हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट को चालू किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,170 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। आजादी के बाद पहली बार वर्ष 2022 में मणिपुर तक पहली मालगाड़ी पहुंची। वर्ष 2023 में पहली मालगाड़ी मेघालय पहुंची और वर्ष 2025 में पहली ट्रेन मिजोरम पहुंची। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में ईटानगर के डेरा नानतुंग सरकारी कॉलेज के प्राचार्य डॉ

0: डॉक्टर एम क्यू खान ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में हवाई संपर्क में काफी सुधार हुआ है।
1: 2014 के पहले एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, वो अभी एयर कनेक्टिविटी आ गई है और लोग 2.5 घंटे में ईटानगर से दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो होलंगी एयरपोर्ट से कलकत्ता जाइए, कलकत्ता से कहीं भी जा सकते हैं, दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट से।
0: वहीं पूर्वोत्तर के विकास को गति देने के लिए पीएम डिवाइन योजना के तहत कुल 6,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में गुवाहाटी के एक स्थानीय निवासी ने कहा कि क्षेत्र में सड़क और हवाई संपर्क पहले की तुलना में काफी बेहतर हुआ है।
2: मोदी गवर्नमेंट का ये 10 साल बहुत अच्छा से पार हुआ है और ये जो हम लोगों का असम का नया एयरपोर्ट बन गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बन गया और सड़कों का भी हालत काफी सुधर गया है। अभी बहुत जल्द से जल्द हम लोग बहुत दूर तक जा सकते हैं और गांव का कनेक्टिविटी भी अच्छा हुआ है।
0: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर के 8 राज्य जिन्हें अष्टलक्ष्मी भी कहा जाता है विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ये अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में ये फैसला सुनाया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 of 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
3: ये आकाशवाणी है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर कड़ी फटकार लगाई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देता है तथा उनका इस्तेमाल अपने हितों के लिए करता है।
5: This is the country.
6: यह वह देश है जहां मौजूदा रक्षा मंत्री राज्य की नीति के रूप में आतंकवादियों की मेजबानी करने, उन्हें प्रशिक्षित करने और तैनात करने की डींगे हाँकते हैं और फिर भी पाकिस्तान खुद को आतंकवाद का शिकार बताता है। वास्तव में यह एक ऐसा विरोधाभास है जिसे केवल पाकिस्तान ही कायम रख सकता है। यह एक फ्रैंकेनस्टीन स्टेट का जीवंत उदाहरण है जो तब हैरान रह जाता है जब उसका अपना ही बनाया हुआ राक्षस उसे वापस काट लेता है।
3: लेबनान पर इसराइल के हमले में 21 लोगों की मौत के बाद अमरीका और ईरान के बीच शांति वार्ता का नया दौर स्थगित हुआ। बाद में इसराइल और हिजबुल्ला युद्ध विराम पर सहमत हुए। हालांकि इसराइल और हिजबुल्ला ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है। इस बीच अमरीका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में प्रस्तावित शांति वार्ता स्थगित कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राम मंदिर के दान के कथित गबन में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि विशेष जांच दल की जांच के जरिए 15 दिनों के भीतर सच्चाई सामने आ जाएगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 पौष अधिनियम के अंतर्गत व्यापक उपायों के तत्काल और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक परामर्श जारी किया है। आयोग ने राज्य सरकारों और जिला प्रशासनों द्वारा त्वरित कार्रवाई के लिए 18 उपायों की सिफारिश की है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में रविवार तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। असम और मेघालय में अगले 3 से 4 दिनों तक तेज वर्षा की संभावना है। विभाग ने मछुआरों को 24 जून तक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में नहीं जाने की सलाह दी है। चीन में मकाऊ ओपन बैडमिंटन की महिला सिंगल्स में अश्मिता चालिहा सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में अश्मिता ने कोरिया की किम मिन सन को हराया। चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के दूसरे चरण में भारत ने 6 पदक पक्के कर लिए हैं। आज प्राची और मीनाक्षी ने अंतिम 4 में स्थान पक्का किया। पुरुष वर्ग में दीपक और निखिल ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारतीय युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने चिन्हित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया। इसके कार्यान्वयन के लिए एक नियामक निकाय गठित करने को कहा। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देने तथा तैनात करने का आरोप लगाते हुए उसकी संयुक्त राष्ट्र में कड़ी आलोचना की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम शगुन चोपड़ा विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi disburses incentives worth 2,400 crore rupees under Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana, says Indian youth will be at forefront of driving global growth, innovation and entrepreneurship in years to come. Country's first commercial plant to manufacture ammonium nitrate from coal to be set up in Jharsuguda district of Odisha with an outlay of 25,000 crore rupees. Supreme Court rules right to walk on demarcated footpath is a fundamental right, calls for setting up a regulatory body to execute it. India slams Pakistan at United Nations, accusing Islamabad of hosting, training and deploying terrorists. A new round of direct peace talks between United States and Iran postponed amid killing of 21 people in Israeli strike on Lebanon. Israel and Hezbollah later agreed to ceasefire. And in sports, Ashmita Chaliha to face Park Ae-yeon in women's single semi-finals of Macau Open Badminton in China tomorrow. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today disbursed incentives worth 2,400 crore rupees under the Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana at a function in New Delhi. This dispersal marks a significant milestone in the implementation of the scheme, which is the government's flagship employment-linked incentive scheme aimed at accelerating job creation, enhancing employability and expanding social security coverage across sectors. Speaking on the occasion, the Prime Minister said, "In the 21st century, opportunities will belong to nations that nurture skilled talent, foster innovation and uphold the highest standards of quality." He said, India is set to lead from the front. Mr. Modi said, India's youth will be at the forefront of driving global growth, innovation and entrepreneurship in the years to come.
7: भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े। जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले, और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले।
5: The Prime Minister also said that during his recent visit to France and Slovakia, he felt the world is gradually recognizing the potential of India's youth. Mr. Modi said, the PM Viksit Bharat Rozgar Yojana is about empowering first-time employees and building a bridge between youth and industry.
7: प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं और आज इन्हीं में से करीब 10 लाख युवा साथियों को अपनी पहली नौकरी में 6 महीना पूरा करने पर इस योजना के तहत उसके लाभार्थ के नाते इंसेंटिव भी मिल चुका है। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है।
8: Speaking on the occasion, Union Minister for Labour and Employment Dr. Mansukh Mandaviya said that the Modi government has implemented the four important labour codes for the welfare and interest of the workers. Prime Minister Narendra Modi will lay the foundation stone of a coal gasification project worth over 25,000 crore rupees at Lakhanpur in Jharsuguda district of Odisha tomorrow.

बन्टी और बबली टू फिल्म की गीत लगत आकाशवाणी एफएम ट्रैगोपन 110 मेगाहर्ट्ज़ पर आजि कारणे हिंदी फिल्म गान प्रोग्राम दे यात पर सेस कुरी दिया से आमी गानाको लोकप्रिय हबो आहिया काली फजीर 6 बजे हुनी थका सब बेला गुड नाइट।